0: जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन। और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींचतान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहाँ पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। दुर्दास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गमाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल न हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार। जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए। दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए। वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे। जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही

देती। और माया क्या है? यही तो है, संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती, यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं, दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण, अपनो रस लिए रहे और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है, ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। हम आज तो संसार में ही रमे हैं, हम जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है, सीखिए समझिए। चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसी जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई। एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है, वो आवश्यकता से अधिक चाहता है। और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल, बात जुगल बिहार की करे बिचारे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करे, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करे, वार्ता करे, चिंतन करे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता,

जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो, पर लौन बिना सब भीग। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की, चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही, वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों? बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है, आप पुनः यहां आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। राका माका कहने लगे, प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है,
हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा, आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है, और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना, अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करे तो शुद्धता का ध्यान रखे, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं में कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी मां प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन

0: वृंदावन।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीत के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझकर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एक आदर्श स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है,

हमारा। प्रिया जी की जो टहल है, जो सेवा है, ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाई। हे मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता। ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का।

0: फल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है वस्तुतः सम्मानित वही है, समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवराज जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो। अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है।

न कहिए न सुनिए, और संत हो फिर तो। नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए, कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए, मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया, वो जल गया कहां, सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है, बोले वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो देवदास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया, तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तीन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है, और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीरथ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद, साधु चरण रज सब सुख साधन यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी की चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। देवदास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: यह निकाला ना तूने देसी मुर्गा। अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी।
1: थैंक यू।
2: यस, इट्स कंफर्म। हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा।
3: सर, R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में एक बैंड स्पोर्ट है।
2: USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार, स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो।
4: Hey David, आजा, बरा।

0: किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देख। It's a money spinner. ये मेरा चैलेंज है।
1: Mr. Braganza, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे?
0: नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे।
2: A country with billion people and ले दे के what 10 world class batsmen? And now by sanctioning RTF, you mean to say ये जो सड़कों पे लड़ते हैं वो सीधा इंटरनेशनल फाइटर से लड़ेंगे?
3: सड़कों पे गली क्रिकेट खेलने वाले नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं देखे आपने?
4: इंडियन स्पोर्ट्स का हर चैंपियन शायद सड़क से उठ कर आया मैम।
5: एक्स फाइटर मिस्टर बाज रावत की इज वेरी स्ट्रांगली फॉर द R2F।
6: आई डोंट एग्री विद मिस्टर बाज रावत।
7: हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो।
8: ब्रेन पावर इज द मेन पावर यू सी।
9: व्हाट डू यू थिंक दिस इज ऑल अबाउट? फाइट भी तो ब्रेन से लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म।
10: स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन ये सब लगता है इस गेम में। यू गॉट टू थिंक ऑन योर फीट और योर डेड।
11: हे पीटर, जाएगा क्या? बोलना जाएगा क्या?
12: अरे जाएगा नहीं, गया।

0: बात हो रही है कि क्या इंडियन फाइटिंग सीन इज अप टू द मार्क?
1: या फॉरगेटिंग मिस्टर देसाई, ये अखाड़ों का देश है और एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट के लिए इतना एक्साइटमेंट होना कमाल की बात है।
0: तो फिर देर किस बात की? यहीं लाइव हमारे चैनल पर डिक्लेयर करें इंडिया के पहले आर्टवे फाइटर्स के नाम।
1: अरे थोड़ा पेशेंस रखिए, इंडिया का पहला मार्शल आर्ट इवेंट है, एक्शन से पहले सस्पेंस तो होना ही चाहिए।
0: मिस्टर पीटर ब्रिगांजा ऑफिस इज रिफ्यूज टू कंफर्म और डिनाई दिस, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जर्मनी का हेवीवेट चैंपियन द ग्रेट लुका इंडिया आ रहा है। अगर ये खबर सच है तो लुका के आने से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का हो गया।
2: That's fantastic. I've seen Luka fight. He's gruesome. He's very, very dangerous.
3: इधर देख।
4: बात खत्म, कंपटीशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया फिर।
5: आप ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि द ग्रेट लुका कभी किसी इंडियन फाइटर से नहीं टकराया। कांटे की टक्कर होगी साहब।

खुजा के बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई, तो करे रीस्टार्ट।

0: तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: सबके साथ खुश रहे, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ पर उसका इतना असर हो जाए कि हम अपने जीवन को जी ना सके।
2: क्या बात है, इसका बहुत बड़ा क्लोजनेस है और इसको जितना हम गंभीरता से लें बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे क्वेश्चन स्ट्रेस का है, रिलेशंस का है, चाहे वो किसी भी बात का है, लेकिन माइंड बॉडी का रिलेशन शुरू से अंत तक रहेगा और इसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर माइंड ने कुछ कहा और बॉडी ने उसको नहीं समझा तो बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए टाइम दें, समय दें, अपने आप को वैल्यूबल रखें। कोई भी चीज़ आपको नीचे नहीं गिरा सकती, ये याद रखिए। सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को नीचे गिराते हैं या ऊपर उठाते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच
1: ओम शांति।
4: थैंक यू। तो ये थी आज की डिस्कशन माइंड बॉडी कनेक्शन पर बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी के साथ। आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात जरूर समझ आती है, जब माइंड शांत और बैलेंस्ड होता है तो बॉडी भी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करने के लिए। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको अस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थम वर्कआउट कर लेता है। हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है। तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे 2 घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते।
1: Ayo, G-Funk, the flame.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इस मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान्स भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

0: आई है सुसु आई 89.6
1: रेडियो महारानी।

0: देखिए भाई, अंजलि वाली वाइब आपको पूरा 4 घंटे यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गिरफ्तार सेगमेंट की। आज हमने किसको गिरफ्तार किया है? आज हमने डाइटिशियन रेखा जी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि अगर बात की जाए इस मंथ की यानी कि अगस्त की, तो 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वीक की शुरुआत हो गई है, लेकिन आपके लिए खास बातचीत लेकर आ गए हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को लेकर। तो मैम, कई लोगों का मानना ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का वेट लॉस होता है, क्या ये सच है, और अगर सच है तो कैसे?
1: हाँ, बिल्कुल सच है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का वेट लॉस होता है, क्योंकि दूध बनाने और पिलाने के दौरान शरीर एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता है, जो वेट लॉस में हेल्प करता है। तो माओं को ध्यान रखना चाहिए कि ये ना सोचें कि हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो वेट गेन हो रहा है। जब हम बच्चे को फीड कराते हैं तो हमारी कैलोरी भी बर्न होती है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो कोशिश करें फीड कराते रहें, टिल 6 मंथ हमें बच्चे को फीड कराना ही कराना है, उसको कुछ और उसके डाइट में हम ऐड नहीं कर सकते, इवन पानी भी।
0: थैंक यू सो मच मैम, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। तो अंशली आ गई है ऑन एयर और बात करने वाले हैं आज साइबर शील्ड के बारे में। और अगर देखा जाए ना, आजकल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एआई भी आपकी आवाज में बात कर सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट। और इसी वजह से ना एक नया साइबर स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब वैसे भी जब मैं अपना शो लेकर आती हूँ, वहाँ मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मार्केट में ना कितने सारे स्कैम आ गए। तो चलिए फिर आज डिकोड कर लेते हैं एक और स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारी आवाज निकाल कर बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। वह एक बार जरूर सोचिए, अचानक से आपके व्हाट्सएप या फोन पर ना किसी अपने का कॉल आए और बिल्कुल उसी आवाज में बात करे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव बोल रहा हो, यार इमरजेंसी है अभी पैसे भेज दो। तो घबराहट में आप क्या करेंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला सच में किसी इमरजेंसी में। बस जैसी गलती आप करने वाले थे, ऐसी ही गलती से साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार ठहर कर जरूर सोचिएगा कि हो सकता है ये आपके अपने की आवाज होगी ना, बिकॉज अब एआई से क्लोन की गई आवाजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह के साइबर स्कैम से बचने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस और साइबर एजेंसीज भी लोगों को इस तरह की एआई वॉइस स्कैम से अलर्ट कर चुकी है। इसलिए आज का साइबर मंत्र बहुत सिंपल सा है, सुनो सबकी लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अगर कभी भी आपको पैसे मांगने वाली इमरजेंसी कॉल या कोई भी वॉइस नोट आए तो पहले उस इंसान को कॉल करके कंफर्म जरूर कीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसी के साथ सिर्फ सेफ नहीं, स्मार्ट रहिए क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक क्लिक ही काफी होता है। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक मेलपास म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

दामन भी अभी गया है, फ्रेंडशिप डे, और फिर से दुनिया भर के दोस्त ऑनलाइन हो गए हैं।

Drake.

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और शो है अंजलि ऑन एयर। तो भाई देखिए, जब अंजलि ऑन एयर होती है तो रेडियो महारानी पर ना बातचीत बहुत ज्यादा होती है, और उसी बातचीत के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आज सोशल स्क्रोल, यानी कि यहाँ मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक स्टोरी के बारे में जो इंटरनेट पर सबका दिल जीत रही है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ज्यादा वायरल है। सोशल मीडिया पर ना एक लेडी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया कि फ्राइडे शाम ऑफिस बंद होने से सिर्फ 5 मिनट पहले बॉस ने उन्हें एक एनवलप दी। एनवलप लेते ही ना उन्हें लगा शायद उनकी जॉब चली गई, और वो घंटों तक ना उस एनवलप को देखती रही, उनकी हिम्मत ही नहीं उसे ओपन करने की। जैसे ही उन्होंने एनवलप खोला तो पता चला कि अंदर टर्मिनेशन लेटर ही नहीं है, बल्कि उसमें उनके पिछले 4 साल के अनक्लेम्ड ओवर टाइम का पूरा हिसाब था। और इतना ही नहीं, साथ में था बॉस का एक हैंड रिटन नोट, यू नेवर क्लेम्ड अ सिंगल आवर वी नोटिस्ट। बस फिर क्या था, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो आज की स्टोरी ना हमें ये बता रही है कि सडन इंसिडेंट जरूरी नहीं शॉक्ड हो, कुछ इंसिडेंट हमें सरप्राइजेस भी देकर जाते हैं, और जितना हम हार्ड वर्क करते हैं ना ये हमें जरूर रिटर्न में मिलता है। तो माय डियर लिसनर्स, मंडे मूड को और भी ज्यादा लाइट बनाने के लिए ये स्टोरी मैं लेकर आई थी। तो मेहनत यूं ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए शानदार सा ट्रैक जो है आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो पर्याप्त मात्रा में है। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली। डॉक्टर कॉलिंग।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजी अंशली इन द हाउस। और चलिए भाई, बातें बहुत सारी हो गई हैं और फिलहाल वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती चलाने का। और देखिए भाई, जब अंजलि ऑन एयर होती है ना, तो अपने साथ अंजलि वाली वाइब जरूर लेकर आती है। और अब इस वाइब की बात करें तो इसका नाम है फरीदाबाद की पहेली। तो भाई देखते हैं आज कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। तो पहेली के साथ आ गई हूँ। पहेली कुछ इस तरह से है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने और शॉपिंग करने आते हैं। मेरी पहचान सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया तक है। रंग, कला, हैंडक्राफ्ट और कल्चर, सब कुछ एक ही जगह मिलता है। बताइए मैं हूँ कौन? चलिए भाई, इतना टफ नहीं करते हैं, आपके लिए ना एक हिंट छोड़ कर जाती हूँ। और हिंट ये है कि मेरा नाम एक झील से जुड़ा हुआ है। सो माय डियर लिसनर्स, आपको पता है ना आपको जवाब कहाँ देना है। तो फटाफट से जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और इस पहेली का जवाब मैं रिवील करूंगी आपसे कुछ ही देर में। तब तक एंजॉय कीजिए, प्यार से ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर सी लगी और इस दिल को कोई ठिकाना न मिला।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, कभी कभी करंट भी लगता है और इस करंट का नाम है खतरों के खिलाड़ी 15। रोहित शेट्टी वंस अगेन इज बैक और इस बार भी उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, कंटेस्टेंट के कंफर्ट जोन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना। नए सीजन फुल ऑन एक्शन मोड में है, हेलीकॉप्टर हो, पानी हो, क्रीपी क्रूल आइस हो या स्काई हाई स्टंट्स, यहाँ हर एपिसोड एक रिमाइंडर है कि घर की EMI भरना शायद इन स्टंट से ज्यादा आसान है। इस सीजन के कंटेस्टेंट लाइनअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, हर कोई ट्रॉफी जीतने आया है, लेकिन स्टंट शुरू होते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलती है, मम्मी मैं घर आ जाऊं क्या। और रोहित शेट्टी उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उन्हें कंटेस्टेंट से ज्यादा मजा उनके रिएक्शन देखने में आता है। सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है, फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टंट्स की क्लिप्स वायरल हो रही है और हर एपिसोड के बाद एक ही डिबेट चलती है, ये स्टंट में मैं होता तो भाई मैं तो कर लेता। हाँ जी, सोफे पर बैठ कर तो हम सब कर ही सकते हैं ना। तो फिलहाल सीजन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया है, अब देखना ये है कि कौन अपने डर को हरा कर ट्रॉफी तक पहुंचता है और कौन सिर्फ मीम्स का फेवरेट बनकर रह जाता है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। तो अगली अपडेट में फिर मिलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और फ्रेश

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। दिस इज आरजे अंजलि और शो है अंजलि ऑन एयर। तो भाई देखिए, अंजलि ऑन एयर हो गई है तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आना तो बनता है ना। सबसे पहले ये बताइए, क्या कभी आपने आरएसी टिकट पर ट्रेवल किया है? अगर किया है ना तो ये आपको जरूर पता होगा कि एक ही बर्थ पर दो लोगों को वेट करना पड़ता है जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो पाती। दो लोगों का वेट करना समझ आता है, लेकिन अब इन दो लोगों में ब्लैंकेट कितने, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी है। तो भाई इसी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट मैं लेकर आ गई हूँ, और अपडेट ये है कि दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने इंडियन रेलवे पर 25,000 का फाइन लगाया। और फाइन लगाने का रीजन ये है, आरएसी में ट्रेवल कर रहे दो अलग अलग पैसेंजर को सिर्फ एक ही ब्लैंकेट प्रोवाइड किया गया। फिर क्या था, पैसेंजर ने कर दी कंप्लेंट और बताया कि एक ब्लैंकेट की वजह से कितना फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ है। तभी यहाँ पर कंज्यूमर कमीशन ने ये बताया कि आरएसी के जितने पैसेंजर्स होते हैं वो लोग भी बेडरोल फैसिलिटी के पूरे पूरे हकदार होते हैं। तो देखिए, आज का अपडेट आपके लिए है। अगर आप भी कभी आरएसी टिकट वाली जगह पर फंस जाए ना, तो अपने राइट्स हमेशा याद रखिएगा। और आज की स्टोरी ना हमें एक बार जरूर समझाती है, अपने पैसेंजर राइट्स जानना उतना ही जरूरी है जितना कि टिकट बुक करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सर्विस में कमी हो ना तो आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर होती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजी अंजलि और शो चल रहा है अंजलि ऑन एयर। दिमाग की बत्ती जलाने का काम मैंने किया था, यानी कि फरीदाबाद की पहेली लेकर आई थी और हिंट भी देकर गई थी और बहुत सारे जवाब हमें मिले। कुछ जवाब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, लेकिन फाइनली हमें फरीदाबाद की पहेली का सही जवाब मिल गया है। तो चलिए पहले आपको जवाब सुना देते हैं।
1: हेलो अंजलि, जो तुमने अभी पहेली पूछी है तो इस पहेली का आंसर है सूरजकुंड। जहाँ हम सब जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना, घूमना, खाना पीना और हर साल इंतजार रहता है, सिर्फ और सिर्फ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही कहा, जवाब है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छी याददाश्त है आपकी, और इसी सही जवाब के लिए आपके लिए बनती है ये जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मॉनिक, और रेडियो महारानी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, साथ ही सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कच्छ हटके।

मच्छर भी हमारे रिश्तेदार की तरह है, बिना बोले आ जाते हैं, लेकिन अपने साथ ना बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। हमें पता है कि एक सीजन आता है जहाँ पर डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ मच्छर नहीं आए हैं, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। और आज की जो अपडेट है वो हमें ये बताती है कि अपना ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ICMR की एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि देश में डेंगू के चारों स्ट्रेन्स एक्टिव हो गए हैं। अगर मैं इन स्ट्रेन की बात करूँ तो DENV1, DENV2 और इसी तरह से 3 और 4। लेकिन इसी के साथ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि DENV2 है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, और कुछ जगहों पर तो ये स्ट्रेन इतना ज्यादा एक्टिव है कि लोगों को बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसलिए इस बार बस ये कहना चाहती हूँ कि डेंगू को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, अपने रिश्तेदारों की तरह मत लेना कि ठीक है टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया, इस बार गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको बहुत तेज बुखार है, बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी थकान फील कर रहे हैं तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताए जा रहे हैं कि डेंगू के इनिशियल स्टेज में हो रही है। तो प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखाएं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, अपना ख्याल रखें। और बस इसी के साथ आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना है, और साथ ही फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, और जैसे कि सभी को पता है कि प्रिवेंशन ही डेंगू से बचने का सबसे बड़ा वेपन है। इस वेपन का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका एस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे बातें। और देखिए भाई, बातें डेली करती हूँ लेकिन आ गई हूँ फिटनेस वाला फंडा लेकर। बहुत सारी बातें कर ली तो चलिए अब टाइम हो गया है फिटनेस वाले फंडे की, क्योंकि हेल्दी मॉर्निंग ही हैप्पी मॉर्निंग की असली शुरुआत होती है। और अगर आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं ना, तो आज से एक छोटा सा चेंज जरूर ट्राई कीजिएगा। फोन उठाने से पहले सिर्फ 2 ग्लास पानी पीजिए और 5 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए, दैट्स इट। बस इतने से चेंज से ना होगा क्या, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, मसल एक्टिवेट होते हैं, बस सुबह की शुरुआत में एनर्जी फील होने लगती है। आपने देखा नहीं है मुझे कितनी एनर्जी के साथ आती हूँ? तो यही है मेरा फिटनेस वाला फंडा। और हमेशा एक बात जरूर याद रखिएगा कि फिटनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम जरूरी नहीं होता। रोज के छोटी छोटी हेल्दी हैबिट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। तो हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और साथ ही एंजॉय कीजिए अंजलि ऑन एयर विद दिस सॉन्ग। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पंप्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

तो चलिए फिर जाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आज मैं टिफिन में क्या लाई हूँ, क्योंकि यार ऑफिस पहुँचते ना सबसे पहला सवाल काम का नहीं बल्कि यही होता है कि टिफिन में बॉस क्या लेकर आयो। तो अगर मैं आज अपने टिफिन की बात करूँ ना, तो मैं तो आज अपने टिफिन में आलू का पराठा और दही लेकर आई हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आखिर आपके टिफिन में आज क्या है, अगर राजमा चावल हो ना तो भेज भी दीजिएगा। खैर देखिए, ऑफिस जाने का ना सबसे प्यारा मोमेंट जो मुझे लगता है वो है कि अपना टिफिन शेयर करना, क्योंकि जब हम टिफिन शेयर करते हैं ना तो बहुत सारी गॉसिप शेयर करने को मिलती है। मेमोरीज तो देखो है ही, लेकिन जो गॉसिप मिलती है ना, जिसे टी कहा जाता है, जेन ज़ीज जिसे टी कहते हैं, और आजकल ना जेन ज़ीज बड़े ट्रेंड में है। खैर मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आज टिफिन में लेकर क्या आए हैं आप। लेकिन आपको पता है ना कहाँ जाना है, बताने के लिए आपको इंस्टाग्राम के पेज पर आना है, रेडियो महारानी का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर जाइए, वॉइस मैसेज भेजिए। फिर जब कल अंजलि ऑन एयर होगी ना तो बताएगी कि आपके टिफिन में क्या था। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर अंजलि ऑन एयर। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है जाने का, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करेंगे आज सिनेमा के गलियारे से बहुत सी नई कहानियों के बारे में कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। कुछ ऐसी कहानियां जो कि ओटी प्लेटफॉर्म पर होंगी स्ट्रीम, तो कुछ का होगा आगाज सिल्वर स्क्रीन पर। वहीं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीकेंड हुई कहानियां इस वक्त कौन कौन से पायदान पर हैं और कितनी कमाई करते हुए नजर आ रही हैं। कुछ नए ट्रेलर टीजर गाने हिंदी सिनेमा से साउथ इंडस्ट्री तक का किस्सा, तो कहीं होगा हॉलीवुड का सस्पेंस का डोज। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूँ सिनेमा की गलियारे में, लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा की गलियारे में घुमाने से पहले सुना दे रहा हूँ कुछ धमाकेदार से गाने।

0: सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
1: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो, रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
2: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: के आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।

गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में। जब ऑपरेशन सफेद सागर की बात की जाए तो 1999 के कारगिल वॉर में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर आधारित, जहां इसकी कहानी 7 अगस्त 2026 को ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाने वाली। कहानी में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दिया मिर्जा स्टार्स नजर आने वाले। पैट्रियोटिक, इमोशनल और कॉम्बैट हैवी स्टोरी के रूप में पेश किया जा रहा है इस कहानी को। जहां अगर बात की जाए तो इसके ट्रेलर को जितना पसंद किया गया है तो मेकर उसकी उम्मीद है कि कहानी को भी उतना ही प्यार मिलता हुआ नजर आएगा। जहां ये कहानी की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा पहले ही रिलीज किया जा रहा है ताकि कहानी को उतना प्यार मिलता है। देखते हैं पैट्रियोटिज्म से भरपूर कहानी क्या धमाल मचाएगी।

0: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको एस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थम वर्कआउट कर लेता है, हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है, तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे 2 घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। फिल्मी टॉनिक में आरजे मोनिका। यहाँ अब हम बात करते हैं ओची प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जिनका लुत्फ आप उठा सकते हैं ओची प्लेटफॉर्म पर। पिछले कुछ वक्त में जो रिलीज हुई कहानियां, मुसाफिर कैफे, आदर्श बाल विद्यालय, इन दोनों कहानियों को ओटी प्लेटफॉर्म पर लुत्फ उठाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर बात मैं यहाँ करूँ द टॉक्सिक लव स्टोरी एंड माई डॉटर्स फादर, इसको भी ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया चुका है। ये कहानियाँ ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम है, इनका लुत्फ उठाई। जहाँ देखिए हर किसी को नहीं मिलता मौका, नहीं मिलता वक्त कि आप सिनेमा घरों में जाकर के कहानी देखें। बिजी हैं अपनी जॉब लाइफ, अपनी लाइफ में टाइम कैसे निकालें यार कि सिनेमा घर में जाने का मौका मिले। तो ओटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ये कहानियों का स्ट्रीम हुआ है, तो इनका लुत्फ उठाई ओटी प्लेटफॉर्म पर। जहाँ सबसे अच्छा रिव्यूज इस वक्त मुसाफिर कैफे का मिलता नजर आ रहा है, एक बेहतरीन लव स्टोरी, सिंपल सोबर लव स्टोरी जिसका अच्छा रिव्यू है। तो आप भी देखिए और बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप 9654896896 पर कि कैसी लगी आपको ये कहानी। बाकी ऐसे चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।
1: Yo, boys, I am singing song. Soup song.

0: अंजलि।
1: हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। तो अंजलि आ गई है ऑन एयर और बात करने वाले हैं आज साइबर शील्ड के बारे में। और अगर देखा जाए ना, आजकल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि AI भी आपकी आवाज में बात कर सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट। और इसी वजह से ना एक नया साइबर स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब वैसे भी जब मैं अपना शो लेकर आती हूँ, वहाँ मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मार्केट में ना कितने सारे स्कैम आ गए। तो चलिए फिर आज डिकोड कर लेते हैं एक और स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारी आवाज निकाल कर बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। वह एक बार जरूर सोचिए, अचानक से आपके व्हाट्सएप या फोन पर ना किसी अपने का कॉल आए और बिल्कुल उसी आवाज में बात करे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव बोल रहा हो, यार इमरजेंसी है अभी पैसे भेज दो। तो घबराहट में आप क्या करेंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला सच में किसी इमरजेंसी में। बस जैसी गलती आप करने वाले थे, ऐसी ही गलती से साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार ठहर कर जरूर सोचेगा कि हो सकता है ये आपकी अपने की आवाज होगी ना, बिकॉज अब AI से क्लोन की गई आवाजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह के साइबर स्कैम से बचने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस और साइबर एजेंसीज भी लोगों को इस तरह की AI वॉइस स्कैम से अलर्ट कर चुकी है। इसलिए आज का साइबर मंत्र बहुत सिंपल सा है, सुनो सबकी लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अगर कभी भी आपको पैसे मांगने वाली इमरजेंसी कॉल या कोई भी वॉइस नोट आए तो पहले उस इंसान को कॉल करके कंफर्म जरूर कीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसी के साथ सिर्फ सेफ नहीं, स्मार्ट रहिए क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक क्लिक ही काफी होता है। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक बस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
2: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं एक बेहतरीन कहानी जन नायकन के बारे में, जहाँ थलपति विजय की ये लास्ट कहानी होने जा सिनेमा घरों में दिखेंगे। इसके बाद कोई भी कहानी में किरदार नहीं निभाने वाले। कास्ट की बात करें तो पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, प्रिया मणि, गौतम वासुदेव, नारायणन जैसे स्टार्स इनके साथ इस कहानी में मौजूद है। बात करें कहानी के बारे में तो लास्ट वीकेंड इसका को रिलीज किया गया, जहां पे वर्ल्ड वाइड 260 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन कर चुकी है जन नायकन। थलपति विजय की अगर बात करें तो जन नायकन के लिए सबसे महंगे स्टार कास्ट में भी शामिल है। जी हाँ, टोटल स्टार कास्ट ने इतना फीस नहीं वसूली जितनी अकेले थलपति विजय वसूलते नजर आए। जन नायकन कहानी में विजय का किरदार बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है। नाम से ही आप अगर देखें जन नायकन कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं कहानी के अंदर कि यार कोई भी हो तो जहां जन नायकन यानी कि थलपति विजय के पास अगर पहुंच जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स और टेंशन दूर होते नजर आ ही जाएंगी। कहानी वैसे दिलचस्प किस्से कहानियां दिखाए गए हैं और बाकी ऐसे ही और भी चर्चाएं होती रहेंगी और देखते हैं कि आखिरकार ये कहानी 250 करोड़ से और कितने बड़े क्लब में शामिल होती है, इसका भी रहेगा इंतजार आने वाले एक दो वीकेंड्स में। और बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: काफी स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे आल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं एक बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, नाम है आदर्श बाल विद्यालय। हल्की फुल्की दिलचस्प कॉमेडी ड्रामा कहानी जो सरकारी स्कूल की असल समस्याओं को मजाकिया अंदाज में सबके सामने ला रही है। सीरीज की बात करें दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से शुरू होती है और जहां पर बोर्ड रिजल्ट के बदले प्रिंसिपल को कैम्ब्रिज जाने का मौका मिलता है। कहानी में बात की जाए तो ज्ञानेश्वरी त्रिपाठी यानी के मेनन और उनकी टीम भागती फिरती नजर आती है यहाँ स्कूल के बच्चों और घर के माहौल के असर और कहानी शिक्षा विभाग की कमियों को गिनाते नजर आएगी। कहानी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट वीकेंड पर ही इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज में से एक, लगभग 4.5 मिलियन यानी 45 लाख व्यूअर्स इस कहानी को देख चुके हैं ओटी प्लेटफॉर्म पर, जहां डेब्यू वेब सीरीज भी कही जाए। यहां मेकर्स के बेहतरीन तरीके से कहानी को बनाया, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, किरदारों ने बहुत बढ़िया तरीके से रोल प्ले किया और जैसे फर्स्ट वीक में इंडिया में सबसे देखी जाने वाली वेब सीरीज रही तो देगा आप अंदाजा लगाइए कि कहानी कितनी ही बढ़िया होगी। ऐसी कहानी जो विद फैमिली देखी जा सकती है और हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आएगी जो आपको लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल इस पॉइंट पर कुछ करने की ज़रूरत है। अभी देखिए इस वेब सीरीज को, बाकी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और बढ़िया सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना और शो चल रहा फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करें हॉलीवुड की एक बहुत बढ़िया फ्रेंचाइज हैरी पॉटर के बारे में, जहाँ हर बच्चा हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज की एक एक किताब, फ्रेंचाइज की हर कहानी को देखना पसंद करता। वहीं हैरी पॉटर को लगभग 25 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और इसी मौके पर थिएटर्स में सारी फ्रेंचाइज जो है दिखाई जाने, जी हाँ फ्रेंचाइज की सारी कहानियों को 27 अगस्त से 3 सितंबर तक थिएटर्स में फिर से रिलीज किया जाने वाला है। पूरी फ्रेंचाइज को रिलीज करने की तैयारी में जुटे हैं मेकर्स, जहां पहले हैरी पॉटर और सॉर्सरर्स स्टोन्स के साथ बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी जोड़ी जाएगी, जहां टिकट्स की बुकिंग स्टार्ट की जा चुकी है। तो हैरी पॉटर के फैंस बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं पूरी फ्रेंचाइज को एक साथ देखने के लिए। वहीं बात करें हैरी पॉटर के फैंस के लिए एक और बहुत अच्छी बात है, जहां पूरी फ्रेंचाइज को तो दिखाया ही जा रहा है एक साथ साथ ही हैरी पॉटर को सीरीज के मौके पर भी रिलीज किया जाएगा, जहां पे किरदार तो वही होने वाले हैं लेकिन इस बार सारे स्टार कास्ट चेंज होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हैरी पॉटर को फिर से रीमेकिंग की जा रही कुछ नई किस्से कहानियों के साथ, जहां पे एक नया हैरी होगा, पूरी स्टार कास्ट बदलने वाली है, वही कैरेक्टर्स के साथ कुछ अमेजिंग कहानियां और छोटे छोटे एपिसोड्स में लेकर के आ रहे हैं हैरी पॉटर के मेकर्स, जहां फैंस बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इस रीमेकिंग को देखने के लिए भी विद न्यू स्टार कास्ट। बाकी ऐसे भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले कॉल ट्रैक
1: फिर आ गए।

प्यार कोन्या और सारी दुनिया में जाकी टोलिए तने जाट बरगा मिलेगा यार कोन्या। और मैडम है दिन में सिप्टा रात ने स्टूडियो में गावे मैंने तेरा जिसा देखा स्टार कोन्या, तेरा जिसा देखा स्टार कोन्या।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान्स भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिली, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। या अब हम बात करते हैं हॉलीवुड की एक और बढ़िया कहानी के बारे में, ब्लैक पैंथर 3। डेविड जॉनसन ने नया ब्लैक पैंथर यानी कि टी चारा के बेचे की भूमिका निभाएंगे और फिल्म की रिलीज डेट 15 दिसंबर, लेकिन 2026 नहीं 2028 तय की गई है। ब्लैक पैंथर की तीसरी फिल्म की तैयारी चल रही है। इसमें ब्लैक पैंथर का किरदार डेविड जॉनसन निभाने वाले हैं, जो कि फैंस बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे ब्लैक पैंथर के किरदार में देखने को। रियान कॉगले इस कहानी को डायरेक्ट करने वाले हैं, जहां रिलीजिंग के लिए बहुत ज्यादा लंबा वक्त है, 2 साल से भी ज्यादा टाइम। फैंस हालांकि जब फाइनली अनाउंस किया गया तो खुश थे कि चलिए तीसरी किस्त आने वाली, लेकिन ये इतना नहीं पता था कि यार इंतजार कुछ ज्यादा लंबा करना पड़ेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे विंसन ड्यूक भी इसमें वापसी लौट रहे हैं, जो सबसे बड़ा एक फैंस के लिए अच्छा बज होने वाला है कि यार विंसन का वापसी लौटना तीसरी किस्त में अपने आप में एक बड़ी बात है। इस बार इनका किरदार क्या कुछ करेगा, क्या कहानी के अंदर नया रूप लेकर के आने वाला है, कहानी किस और ले जाते नजर आएंगे, इसका इंतजार रहेगा और इंतजार ज्यादा लंबा ही रहने वाला है 2028 तक। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और बढ़िया सा गाना।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। तो अंशली आ गई है ऑन एयर और बात करने वाले हैं आज साइबर शील्ड के बारे में। और अगर देखा जाए ना, आजकल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एआई भी आपकी आवाज में बात कर सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट। और इसी वजह से ना एक नया साइबर स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब वैसे भी जब मैं अपना शो लेकर आती हूँ, वहाँ मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मार्केट में ना कितने सारे स्कैम आ गए। तो चलिए फिर आज डिकोड कर लेते हैं एक और स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारी आवाज निकाल कर बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। वह एक बार जरूर सोचिए, अचानक से आपके व्हाट्सएप या फोन पर ना किसी अपने का कॉल आए और बिल्कुल उसी आवाज में बात करे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव बोल रहा हो, यार इमरजेंसी है अभी पैसे भेज दो। तो घबराहट में आप क्या करेंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला सच में किसी इमरजेंसी में। बस जैसी गलती आप करने वाले थे ऐसी ही गलती से साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार ठहर कर जरूर सोचेगा कि हो सकता है ये आपके अपने की आवाज होगी ना, बिकॉज अब एआई से क्लोन की गई आवाजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह के साइबर स्कैम से बचने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस और साइबर एजेंसीज भी लोगों को इस तरह की एआई वॉइस स्कैम से अलर्ट कर चुकी है। इसलिए आज का साइबर मंत्र बहुत सिंपल सा है, सुनो सबकी लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अगर कभी भी आपको पैसे मांगने वाली इमरजेंसी कॉल या कोई भी वॉइस नोट आए तो पहले उस इंसान को कॉल करके कंफर्म जरूर कीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसी के साथ सिर्फ सेफ नहीं, स्मार्ट रहिए क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक क्लिक ही काफी होता है। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार सा ट्रैक म्यूजिक ब्रेक के बाद। बेस्ट ऑफ अंजलि।

0: फिल्मी फ्लेवर
1: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
1: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
3: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
4: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर का जहाँ वक्त हो चला और आज बर्थडे है उस कलाकार का जिसने अपनी कॉमेडी एक्टिंग जबरदस्त टाइमिंग से हर घर में अपनी पहचान बनाई। कभी गुत्थी तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी तो कभी किसी और फनी कैरेक्टर के रूप में हर बार ऑडियंस को खुल कर हंसाया। लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही नहीं सीरियस एक्टिंग में भी उसने अपना दम साबित किया। बात कर रहा हूं मैं सुनील ग्रोवर की। कॉमेडी नाइट विद कपिल से अलग अलग किरदारों में सबके सामने आना और एक बेहतरीन अंदाज में अपनी कॉमेडी पेश करना, बढ़िया टाइमिंग्स के साथ और फैन फॉलोइंग इतनी बटोरी कि हर फैन उनको दिल से चाहता। कभी कभी तो यूं होता है कि कॉमेडी नाइट विद कपिल में कुछ ऐसा डायलॉग कह जाते हैं, ऐसा फनी लाइन कह जाते हैं जो शायद एक ऐसा डायलॉग बन जाता है जो रील्स में भी बिल्कुल उसको कैप्चर किया जाने लगा। तो सुनील ग्रोवर के बहुत सी किस्से कहानी आप सबके लिए लेकर के आया हूं, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुना देता हूं और बढ़िया बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात कर रहे थे आज सुनील ग्रोवर की। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले सुनील ग्रोवर ने थिएटर और रेडियो से अपने करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे टेलीविजन की दुनिया में उन्होंने अपने एक अलग पहचान बनाई। कॉमेडी शोज में अलग स्टाइल, एक्सप्रेशन और टाइमिंग ने उन्हें देश के सबसे पसंदीदा कॉमेडियंस में शामिल किया। उनके करेक्टर सिर्फ जोक्स नहीं होते बल्कि पूरी पर्सनालिटी के साथ ऑडियंस के दिलों में बस जाते हैं। सुनील ग्रोवर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो से, जहां उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने उनको वर्ल्ड वाइड अलग पहचान दी। इसके अलावा फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। भरत, गुड बाय और सनफ्लावर जैसी कहानियां, कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल और सीरियस रोल्स में भी अपनी परफॉर्मेंस को काफी बढ़िया तरीके से निभाते आए हैं सुनील ग्रोवर। ऐसी और भी बातें करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बढ़िया बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन

देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ, तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सोनी ग्रोवर जो एक ट्रेन रेडियो आर्टिस्ट भी रहे और टेलीविजन पर आने से पहले वॉइस वर्क और आरजे के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को पता। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी ओवर एक्टिंग के सिर्फ एक्सप्रेशंस और टाइमिंग से ऑडियंस को हंसा देते हैं। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल परफॉर्मर्स में गिने जाते हैं सुनील ग्रोवर। जहाँ सबसे दो फेवरेट कैरेक्टर तो आपको पता ही है, तो बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर की गुत्थी या डॉक्टर मशहूर गुलाटी, दोनों से आपके वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर कौन से हैं सुनील ग्रोवर के, बताइएगा जरूर। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा। डिरो बातें, तब तक सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम को चढ़।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था, एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पम्प दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

एक बात बताओ, आज किसी ने तुम्हें कुछ पुछू बोला क्या? नहीं बोला तो टेंशन मत लो, शाम तक कोई ना कोई रील देखकर जरूर बोल देगा। सीरियसली, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक ही वर्ड ने सबका दिमाग घुमा रखा है, कुछ पुछू। और सबसे फनी बात ये है कि आधे लोग उसे बोल रहे हैं, बाकी आधे लोग गूगल से पूछ रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। तो चलो आज के दो घंटे थोड़े इजी बनाते हैं। मैं हूँ आरजे पलक और ये है द हैप्पी आवर्स, जहाँ लंच के बाद की नींद भी भाग जाती है और मूड भी फुल रिचार्ज हो जाता है। हैप्पी आवर्स। वैसे इंटरनेट को ना एक अवार्ड मिलना चाहिए, रैंडम चीजों को ओवरनाइट सेलिब्रिटी बनाने का अवार्ड। जरा सोचो, एक छोटा सा वर्ड, ना कोई ग्रामर, ना कोई डिक्शनरी, और देखते ही देखते हर दूसरी रील में वही सुनाई दे रहा है। कुछ पूछो तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। किसी ने अपने पेट को बोल दिया, किसी ने अपने पार्टनर को। मीम्स वाले तो इतने क्रिएटिव निकले कि सैलरी को भी बोल दिया, आजा ना मेरी कुछ पूछू। यही तो इंटरनेट का मैजिक है। यहाँ कब कोई सॉन्ग ट्रेंड बन जाए, कब कोई डायलॉग और कब कोई रैंडम वर्ड हमारा फेवरेट बन जाए, कोई आइडिया ही नहीं होता। और सच बताऊं, इसी वजह से सोशल मीडिया कभी बोरिंग नहीं लगता। वैसे इतनी देर से कुछ पूछू की बात कर ली है तो अब मूड भी उसी लेवल का क्यूट होना चाहिए ना। तो चलो म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाते हैं और गाने के बाद एक और ऐसे वर्ड लेकर आऊंगी जो सुनते ही लगता है ये इंग्लिश है या जेंजी ने अपनी अलग डिक्शनरी लॉन्च कर दी, डेलुलू। बस गाने के बाद बात करेंगे इसी के बारे में।

गाना सुनते सुनते शायद आपके दिमाग में भी एक ही सवाल आया होगा, आखिर ये डेलुलू होता क्या है? तो चलो आज बिना इंग्लिश टीचर बने सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डेलुलू यानी डेल्यूजनल, मतलब जब रियलिटी कुछ और हो और हम अपने दिमाग में अलग ही पिक्चर चला रहे हों। जैसे उसने मेरी स्टोरी लाइक कर दी, यानी कि रिश्ता पक्का है, अब तो शादी होकर ही रहेगी। और इसी तरह बॉस ने आज गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो भी स्माइल के साथ। इसका मतलब उनके दिमाग में प्रमोशन चल रहा है, इंक्रीमेंट तो पक्का है। वैसे थोड़ा सा डेलुलू होना गलत नहीं है, और इसी वजह से लोग बड़े सपने भी देखते हैं। लेकिन सपनों के साथ साथ मेहनत का पासवर्ड भी याद रखना, क्योंकि सिर्फ इमेजिनेशन से अटेंडेंस नहीं लगती। वैसे इंटरनेट की डिक्शनरी तो आज खुल ही गई है, लेकिन गाने के बाद एक ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ जेंजी की नहीं, हर जनरेशन की प्रॉब्लम है, और वो है चार लोग क्या कहेंगे। और बिलीव करो ये चार लोग आखिर है कौन, आज ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस गाने के बाद।

मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती है। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खास तौर पे जिनको अस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू।

ये गाना सुनते सुनते ना कल की एक बात याद आ गई मुझे। मैं लिफ्ट में खड़ी थी और दो आंटीज आपस में बात कर रही थी। एक ने बोला कि आजकल के बच्चे ना बस फोन ही चलाते रहते हैं, और दूसरी आंटी ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन उसी फोन से पैसे भी कमा रहे हैं। और वही सुन के लगा, जनरेशन गैप सिर्फ एज का नहीं, सोच का भी होता है। और सच बताओ कि कितनी बार तुमने भी कोई नया काम शुरू करने से पहले ये सोचा होगा कि यार लोग क्या कहेंगे। और मुझे ना ये लोग बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। जब हम कुछ नया करते हैं तब भी इनको प्रॉब्लम होती है, और जब कुछ नहीं करते तब भी इनको प्रॉब्लम होती है। आज कंटेंट क्रिएशन हो, पॉडकास्टिंग हो, या अपना स्टार्टअप हो, बाहर से सबको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, अंदर कितनी मेहनत लगी वो सिर्फ वही जानता है जो सफर से गुजरा हो। इसलिए अगर दिल कह रहा है कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए तो एक बार जरूर करना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बाकी तुम्हारा काम है अपनी कहानी खुद लिखना। चलो अब थोड़ा म्यूजिक हो जाए, और गाने के बाद सीधा चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में, क्योंकि एक टीजर ने सोशल मीडिया पर इतनी हलचल मचा दी है कि हर दूसरा इंसान बस एक ही बात कर रहा है। रामायण का टीजर देखा क्या?

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थंब वर्कआउट कर लेता है, हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेरिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है, तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: मन गणत सूत्र लाके से मन गणत सूत्र।

अब बात करते हैं उस टीजर की जिसने रिलीज होते ही इंटरनेट का टेम्परेचर बढ़ा दिया। बस कुछ मिनट का टीजर और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, हर जगह एक ही चीज चर्चे में है और वो है रामायणा। और एक्साइटमेंट की वजह भी बड़ी है। रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे। टीजर में लोग सिर्फ बीएफएक्स की ही बात नहीं कर रहे, बैकग्राउंड म्यूजिक, ग्रैंड विजुअल्स और उस सिनेमेटिक फील की भी काफी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर फैंस अभी से अपने फेवरेट सीन्स प्रिडिक्ट करने लगे हैं। और हाँ, सलमान का नाम भी काफी चर्चा में रहा है। कभी कैमियो की रिपोर्ट्स, कभी अलग रोल्स की स्पेकुलेशंस, लेकिन फिलहाल मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। तो अब देखना ये होगा कि रिलीज के बाद ये फिल्म एक्सपेक्टेशंस पर कितनी खरी उतरती है। लेकिन एक बार टीजर ने जरूर प्रूव कर दी, जब कहानी रामायणा की हो ना, तो सिर्फ फिल्म नहीं, एक इमोशन भी रिलीज होता है। अब बॉलीवुड की खबर तो हो गई, लेकिन गाने के बाद थोड़ा अपने वार्डरोब की भी खबर लेते हैं। बारिश का मौसम है तो स्टाइल भी वेदर फ्रेंडली होना चाहिए। एक दो इजी फैशन टिप्स के साथ मिलती हूँ गाने के बाद।

0: कर गई चुल।
1: बेस्ट ऑफ अंजलि।
2: हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। तो अंजलि आ गई है ऑन एयर और बात करने वाले हैं आज साइबर शील्ड के बारे में। और अगर देखा जाए ना, आजकल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि AI भी आपकी आवाज में बात कर सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट। और इसी वजह से ना एक नया साइबर स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे भी जब मैं अपना शो लेकर आती हूँ वहाँ मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मार्केट में ना कितने सारे स्कैम आ गए। तो चलिए फिर आज डिकोड कर लेते हैं एक और स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारी आवाज निकाल कर बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। वो एक बार जरूर सोचिए, अचानक से आपके व्हाट्सएप या फोन पर ना किसी अपने का कॉल आए और बिल्कुल उसी आवाज में बात करे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव बोल रहा हो, यार इमरजेंसी है अभी पैसे भेज दो। तो घबराहट में आप क्या करेंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला सच में किसी इमरजेंसी में। बस जैसी गलती आप करने वाले थे ऐसी ही गलती से साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार ठहर कर जरूर सोचेगा कि हो सकता है ये आपके अपने की आवाज हो ही ना, बिकॉज अब AI से क्लोन की गई आवाजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह के साइबर स्कैम से बचने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस और साइबर एजेंसीज भी लोगों को इस तरह की AI वॉइस स्कैम से अलर्ट कर चुकी है। इसलिए आज का साइबर मंत्र बहुत सिंपल सा है, सुनो सबकी लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अगर कभी भी आपको पैसे मांगने वाली इमरजेंसी कॉल या कोई भी वॉइस नोट आए तो पहले उस इंसान को कॉल करके कंफर्म जरूर कीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसी के साथ सिर्फ सेफ नहीं स्मार्ट रहिए, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक क्लिक ही काफी होता है। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार सा ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: लवर्स।
1: आज जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी तो मैंने एक बात नोटिस की कि बारिश का सीजन शुरू होते ही ना दो चीजों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहला है मौसम और दूसरा वार्डरोब। सुबह धूप देखकर लाइट कलर पहन लो और 10 मिनट बाद बारिश हो जाती है और घर वापस आते आते लगता है फैशन शो नहीं सर्वाइवल चैलेंज कंप्लीट करके आए हैं। वैसे इस सीजन में एक सिंपल हैक याद रखना, हैवी आउटफिट से बेटर है लाइट वेट फैब्रिक्स और वाइट स्नीकर्स। जितने क्यूट लगते हैं ना बारिश के पानी में उतनी ही जल्दी उनका मूड खराब हो जाता है। एक क्लासी जैकेट, कंफर्टेबल फुटवेयर और एक छोटी सी अम्ब्रेला, बिलीव मी स्टाइल भी रहेगा और स्ट्रगल भी कम होगा। फैशन का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, कंफर्टेबल फील करना भी होता है। अब गाना इंजॉय करो और उसके बाद सीधा चलते हैं अपने शहर की तरफ, देखते हैं फरीदाबाद में आज क्या चल रहा है।

0: Hours.
1: वैसे एक चैलेंज है आप सभी के लिए, आज ऑफिस से वापस आते टाइम या घर से निकलते टाइम अपने आसपास ना एक बार ध्यान से देखना। हो सकता है किसी गली में नया कैफे खुल गया हो, कहीं कोई एग्जीबिशन लगी हो या कोई कम्युनिटी इवेंट चल रहा हो। और फनी बात पता है, हम दूसरे शहरों की अपडेट सबसे पहले जान लेते हैं, लेकिन अपने ही शहर में क्या नया हुआ वो बाद में पता चलता है। तो आज से एक काम करते हैं, अपने शहर को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हर सिटी की अपनी स्टोरीज होती हैं, बस उन्हें नोटिस करने की आदत होनी चाहिए। चलो अब एक और गाना हो जाए और शो के आखिरी कुछ मिनट होंगे एक छोटी सी पॉजिटिव बात के नाम। बिलीव मी, शायद आज का ये थॉट तुम्हारे साथ पूरा दिन रहे।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: फ्लावर्स।
1: कभी नोटिस किया है कि हम फोन की बैटरी 20 मिनट होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन अपनी बैटरी 2% पे भी बोलते रहते हैं कि बस ये काम खत्म कर लूं, उसके बाद आराम कर लूंगा। और वही बस ना कभी खत्म ही नहीं होता, कभी ऑफिस, कभी कॉलेज, कभी घर, और बीच बीच में ना हम खुद को ही पॉज मोड पर रख देते हैं। इसलिए आज एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए, आज सिर्फ 10 मिनट फोन साइड में रखना, अपना फेवरेट गाना सुन लेना, चाय पी लेना, या बस बालकनी में खड़े होकर बारिश देख लेना अगर आए तो। बिलीव मी, कभी कभी ना 10 मिनट का ब्रेक पूरे दिन का मूड रीसेट कर देता है। वो कहते हैं ना, हैव अ ब्रेक, हैव अ चॉकलेट। चलो अब एक और गाना हो जाए और उसके बाद द हैप्पी आवर्स को एक छोटी सी स्माइल के साथ रैप अप करेंगे। कहीं मत जाना, अभी मिलते हैं।
2: It's been long.

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान्स भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहां ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

0: लवर्स।
1: पता है आज के दो घंटे कितनी जल्दी निकल गए? कभी कुचू पुचू पर हंसे, कभी डेलुलू समझा, कभी उन चार लोगों की बात की जो हर किसी की लाइफ में बिना इनवाइट किए आ ही जाते हैं, और बॉलीवुड का पॉपकॉर्न भी गर्म रहा, फैशन की बातें भी हो गई और अपने शहर का चक्कर भी लगा लिया। जाने से पहले आज का एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। आज किसी एक इंसान को बिना किसी रीजन के बस थैंक यू बोलना। हो सकता है आपके लिए सिर्फ दो वर्ड्स हों, लेकिन किसी और के लिए पूरा दिन अच्छा बन जाए। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे द हैप्पी आवर्स। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी मस्ती के साथ। तब तक हंसते रहना, खुश रहना, और याद रखना लाइफ परफेक्ट हो या ना हो, मूड परफेक्ट बनाना हमारे हाथ में होता है। बाय बाय, टेक केयर।
0: हैप्पी आवर्स।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। तो अंशली आ गई है ऑन एयर और बात करने वाले हैं आज साइबर शील्ड के बारे में। और अगर देखा जाए ना, आजकल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एआई भी आपकी आवाज में बात कर सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट। और इसी वजह से ना एक नया साइबर स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे भी जब मैं अपना शो लेकर आती हूँ वहाँ मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मार्केट में ना कितने सारे स्कैम आ गए। तो चलिए फिर आज डिकोड कर लेते हैं एक और स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारी आवाज निकाल कर बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। वह एक बार जरूर सोचिए, अचानक से आपके व्हाट्सएप या फोन पर ना किसी अपने का कॉल आए और बिल्कुल उसी आवाज में बात करे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव बोल रहा हो, यार इमरजेंसी है अभी पैसे भेज दो। तो घबराहट में आप क्या करेंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला सच में किसी इमरजेंसी में। बस जैसी गलती आप करने वाले थे ऐसी ही गलती से साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार ठहर कर जरूर सोचेगा कि हो सकता है ये आपके अपने की आवाज होगी ना, बिकॉज अब एआई से क्लोन की गई आवाजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह के साइबर स्कैम से बचने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस और साइबर एजेंसीज भी लोगों को इस तरह की एआई वॉइस स्कैम से अलर्ट कर चुकी है। इसलिए आज का साइबर मंत्र बहुत सिंपल सा है, सुनो सबकी लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अगर कभी भी आपको पैसे मांगने वाली इमरजेंसी कॉल या कोई भी वॉइस नोट आए तो पहले उस इंसान को कॉल करके कंफर्म जरूर कीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसी के साथ सिर्फ सेफ नहीं स्मार्ट रहिए, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक क्लिक ही काफी होता है। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार सा ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कहती
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचें, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
5: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
5: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
5: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
5: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
5: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
5: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
5: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

मंडे की शाम, फिर से आ गया ये मंडे और फिर से आ गया हूँ मैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि आज से कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है के शो का नाम है HR 896 89.6, हमारी फ्रीक्वेंसी है। हरियाणा में हम रहते हैं, फरीदाबाद की बात कर रहे हैं और फरीदाबाद के बारे में सारी बातें हो जाएंगी आज इधर ही रेडियो महारानी पे। और इसी के साथ साथ एक बात बोलना चाहता हूँ आप सभी को कि अगले 4 घंटों के लिए मैं आ गया हूँ और अब से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 9 मैं आप सभी के साथ बैठा रहूँगा और बातें करेंगे खूब सारी। तो पता मैंने आज क्या देखा? मैंने आज देखा सड़कों पर कीचड़ कीचड़ कीचड़ कीचड़, और उसके अलावा कई जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी जमा हो रखा था और वो गड्ढे थे और गाड़ी वाले उधर से नहीं जा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, गड्ढे में कौन अपनी गाड़ी को दाएगा। तो हुआ क्या, वहाँ पर मच्छरों का बहुत, सारे मच्छर उसके ऊपर तैर रहे थे, बेसिकली अंडे ही दे रहे होंगे वहाँ पर। और मच्छर जब पनपेंगे तो फिर क्या होगा, बीमारी बढ़ सकती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ देखो अपने घर के आसपास भी नज़रें दौड़ाओ, और अगर आपके घर के आसपास ऐसी कुछ चीज़ है तो उस पानी को स्टैग्नेंट मत रहने दो, मतलब ठहराव मत रहने दो उस पानी में, क्योंकि अगर ठहराव रहेगा तो मच्छर अंडे देंगे। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे और उन्हीं में से एक गाना चला रहा हूँ, मगर इसी के साथ साथ पूरे फरीदाबाद के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी 89.6 पर। तुझे

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

तो जी बिल्कुल आरजी गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। और एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर, और वो ये कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कोई ना कोई वीडियो ट्रेंड पे चली जाती है, बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट ट्रेंड हो जाती है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आजकल एक ना नया ट्रेंड आ गया है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो उस टाइम हर घर से एक इंजीनियर निकल रहे थे, फिर उसके बाद अब स्पोर्ट्स की तरफ भी लोगों की रुचि बढ़ने लग गई, तो उसी तरह से अब लोग कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं। आप जिस भी इंसान को देख लो वो कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, और देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बनिए। बट एक बात बोलना चाहूँगा कि ऑथराइजेशन, मतलब एक वो होती है ना अपनी क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता जिसे कहते हैं, वो मत खोने दीजिएगा। मतलब आप जो भी चीज़ पेश कर रहे हैं ना, बस उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना है, पेश कीजिए एज इट इज़। क्योंकि आज की डेट में आप लोग भी देखते होंगे कि जितने भी यंग माइंड्स हैं ये सब लोग अपना ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं, ये सब लोग अपना ज्ञान ले रहे हैं एक ही जगह से, और उसे कहते हैं सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे आप लोग भी वीडियोस बनाइए, एंड मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, 10,000 करोड़ की मार्केट है ये, और इसमें से एक मग्गा भी अगर आप निकाल लोगे तो करोड़ रुपए तो बन ही जाएंगे आपके साल के अंदर। मगर इन पैसों के चक्कर में कभी ये मत भूल जाना कि हमारा ज़मीर भी है कुछ, और उसी के साथ साथ हम लोग जो भी चीज़ पब्लिक में पेश कर रहे हैं क्या वो 100% सच है भी या नहीं। तो आप लोग जो भी कंटेंट शेयर कर रहे हो, अगर आप फिटनेस टिप्स दे रहे हो तो उसको अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही फिटनेस टिप्स दीजिए। और हो सके तो मैं ये बोलूँगा अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो कोई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन मत दे देना कभी गलती से भी कि ये दवाई खा के देखो इससे ठीक हो जाता है वो जाता, नहीं करना ये सब हमें। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इन्फ्लुएंसर बनिए। और देखो बहुत पैसा है इस चीज़ में, चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी मगर इन्हीं के बीच गाने भी चलाऊंगा। तो गाने का वक्त आ चुका है आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर, सुनिए इस गाने को। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, आप सुन रहे हैं HR 896 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन।

0: क्या आप लोग भी सड़क पर गड्ढों से परेशान हैं? अगर परेशान हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में काफी सारी जगह ऐसी है जहां पर गड्ढे बढ़ गए हैं। जी हाँ, स्वागत है जी सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसको ना शेयर करना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे जीवन से रिलेटेड हो या फिर हो फरीदाबाद से रिलेटेड। तो अगर आप लोग भी कहीं ना कोई परेशानी झेल रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग गड्ढों की बात कर रहे हैं, तो अगर गड्ढों की बात करूं तो फरीदाबाद में हर सेक्टर में कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहां पर बारिश के कारण या फिर मैं बोलूं कोई और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं। एंड आज ही मैंने ट्रैवल किया नहर पार अगवानपुर साइड। अगवानपुर इज लाइक सेक्टर 91, सराय के बैक साइड में सेहतपुर, तिलपत, इन सब के आसपास से होते हुए अगवानपुर जाते हैं। वहाँ की सड़कें अभी बन रही है, मगर जब तक नहीं बनेगी तब तक के लिए लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये है गड्ढों का माहौल। तो अभी देखो, डेवलपमेंट हो रहा है एंड डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, तो उसमें टाइम लगेगा। बट उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट रूट अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट रूट ले सकते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा होता है, हम लोग समय के अभाव को देखते हुए हम लोग छोटे रास्ते से जाते हैं, उसमें गड्ढे होते हैं। समय का अभाव है इधर भी, तो इसी के लिए मैं गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। ये गाना आप सभी के लिए, मैं हूँ गौरव आप सभी के साथ।
1: I'm a pussy boy. Sorry.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

That was such an amazing song from the movie परम सुंदरी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। हाँ, एक और बात बोलना चाहूंगा, आप लोगों के घर के आसपास कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि मैं जहां भी देख रहा हूँ वहां दिक्कत तो है, मगर उससे पहले रेडियो का गौरव, आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है। आरजे गौरव और 896 HR सुन रहे हैं आप, मतलब HR 896 सुन रहे हैं आप, और प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। देखो, प्रॉब्लम किसको नहीं है, जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम है। और अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो है फरीदाबाद की प्रॉब्लम। तो फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम, और वो है सिर्फ एक ही चीज जिसे कहते हैं हम कचरा। क्या हम इससे छुटकारा पाएंगे कभी भी नियर फ्यूचर? आप लोग सोचिए जरा इसके बारे में, क्योंकि अगर हम लोग अपने आप से सवाल करें तो हम लोग कितनी गंदगी फेंकते हैं सड़क पर, सोचिए इस बारे में। दूसरी चीज, क्या हम लोग सच में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करते हैं? नहीं, अपने हम हाउस होल्ड में देख लेते हैं, हम लोग अपने किचन में देख लें, तो क्या हम लोग सच में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग कर रहे हैं या फिर नहीं? अगर इसका जवाब नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। और तीसरी चीज, जब हमारे घर के आसपास कचरा जमा होता है तो क्या हम लोग ऐप्स के जरिए, मतलब MCF की एक ऐप है उसके जरिए हम लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं? नहीं ना, तो हमें भी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। एंड हाँ, सरकार का तो काम है, उन्हें काम करना ही पड़ेगा, मगर जहाँ सरकारी कर्मचारी काम करके जा रहे हैं उसके बाद भी वहाँ कूड़ा अगले दिन मिल रहा है, तो यहाँ किसकी गलती है? सोचिए इसके बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: दिन में बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल करती है।
0: रीड का फंदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जिन मनुष्यों को तो दानवों से बचा रहा है, कलयुग में दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े दानव को जन्म देंगे जिसके जागते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी।
5: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को

0: हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म, लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

ओए होए होए, कितना प्यारा गाना है ना। ये उस टाइम वायरल था, कब, जब हम लोग छोटे थे, मगर अब एक वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो क्या कह रही है, तो को जरा सबर करो, सब कुछ बताता हूँ। उससे पहले रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है 89.6 रेडियो महारानी पर। एंड अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो यही है कि देखो, एक वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो के बारे में मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इस वीडियो में ना, एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने बोला, कहता कि प्याज के ऊपर हनी लगा के खाओ, फ्रेंच फ्राइज वाला टेस्ट आएगा। और वो रिएक्शन भी ऐसी दे रहा जैसे सच में आ गया हो। कह रहा, टमाटर के ऊपर आप अगर नमक डाल के खाओगे तो आप लोगों को पिज्ज़ा का टेस्ट आ जाएगा। मतलब क्या क्या बातें कर रहा है यार वो, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना ट्राई किया जाए। और उस लड़के के रिएक्शंस देखने के बाद ना, सच में एक बार को मेरा मन करा कि ये सब चीज़ें तो ट्राई करनी बनती है। और हाँ, माफ़ कीजिएगा, टमाटर के ऊपर नमक डाल के वो स्ट्रॉबेरी वाला टेस्ट बता रहा था। फिर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे पता लगा कि ये सब कुछ बकवास था, बिल्कुल बकवास। और मैं आप सभी को ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर देखी गई सारी चीज़ें सच नहीं होती मेरे दोस्त। हर चीज़ पर विश्वास मत किया कीजिए, ये मैं आप सभी से गुजारिश करके कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सब चीज़ों पर विश्वास कर लेंगे तो फिर आप लोग बहुत इजीली ब्रेन वॉश भी हो जाओगे। देखो करना क्या है, आपके पास सोशल मीडिया पर कोई भी वायरल वीडियो आ रही है या फिर कोई भी रील आ रही है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया से मिल रही है तो आपको बस 5 मिनट का टाइम लेना है। 5 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप लोगों को बस गूगल खोलना है या फिर चैट जीपीटी खोलना है या फिर जेमिनी खोलना है और उससे पूछना है क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है या नहीं, तो वो आपको सीधी सच्चाई बता देंगे। सोचिए इसके बारे में और ज़रा अभी थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस गाने के ऊपर। गाने का नाम है ख्याल, तलविंदर की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इंसान।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने घर से तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया।

0: मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: यो बॉयज, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, सुपर सॉन्ग, फ्लॉप सॉन्ग।

बिल्कुल आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है 89.6 पर। और सभी को बता दूं अब वक्त आ चुका है कुछ ऐसी चीज का जिसमें हम करते हैं सपनों को डिकोड। तो आज का सपना है कि काफी बार ऐसा होता है ना, हम लोग सपने में देखते हैं अपने बचपन के दोस्तों को जिनसे बहुत सालों से मिले ही नहीं है। तो अगर आप बचपन के दोस्तों से फिर से मिल रहे हो वो भी सपने में, तो इसका मतलब यही होता है कि अब आप अपनी बिजी लाइफ से थक गए हो और अपने बचपन के वो बेफिक्र दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, है कि नहीं। और पता है आपको, एक ना स्वप्न शास्त्र भी है। हाँ, जैसे अर्थशास्त्र वैसे ही स्वप्न शास्त्र है। वैसे उसके मुताबिक पता क्या होता है कि पुराने दोस्तों को अगर आप लोग देख रहे हो सपने में, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में किसी पुराने साथी के मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इस बात ये चीज़ ऐसी दिखाती है कि आपके अंदर जो पुरानी खुशियाँ थी, जो मासूमियत थी, वो दोबारा आप महसूस करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें और सपनों में आप लोग दोनों कर क्या रहे थे इससे भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप लोग कहीं घूमने गए हो, आप लोग कुछ खा रहे हो या फिर कुछ स्पेशल चीज़ खा रहे हो या फिर आप लोग स्पेस में उड़ रहे हो, तो भी बहुत डिफरेंट मतलब मीनिंग निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है सपनों में, और अक्सर सपने ना सच भी होते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर अभी भी आप लोग अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिले हो बहुत टाइम से, तो वक्त आ चुका है कि अपने पुराने दोस्तों को एक फ़ोन कॉल लगाइए और उनसे मिलने ज़रूर जाइए। और इसी के साथ साथ एक बात बोलूँगा, अगर आप लोग किसी और शहर में रह रहे हैं और बचपन के दोस्त को मिस कर रहे हैं, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है अगर आपके पास, तो अब टाइम है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया पर हर जगह आप लोग उन्हें सर्च कर सकते हैं और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप लोगों को मालूम है, एक लड़का हमारे देश का, इवन हमारे हरियाणा का बोलूंगा, वो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए आर्मेनिया में गया था मगर चूक गया। पहली लड़ाई थी उसकी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी हाँ, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है 89.6 पर। शो का नाम है HR 896 एंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम होता है अंकित बयानपुरी। आप सभी ने इनकी वीडियोस देखी होगी। लॉकडाउन के बाद एकदम से फेमस हुए थे 2022 में रामनवमी सारे ने, जब इन्होंने 75 हार्ट चैलेंज लिया था। उसके बाद इन्होंने UFC की तैयारी करनी शुरू कर दी थी मगर MMA सीखा और फिर उसके साथ साथ ग्रैपलिंग भी सीखी। तो हुआ ये कि अंकित का मैच था अरमान के साथ। अरमान एक बहुत ही बड़े रेसलर कह सकते हो।

कि अपना पहला ही मैच अंकित बयानपुरिया हार गए। आर्मेनिया में ये मैच हुआ था। देखो, मैच हारना एक अलग चीज है, मगर यहां पर मैं भी बोलना चाहूंगा, इतनी हिम्मत करना कि पहला ही मैच एक ऐसे रेसलर के साथ लड़ना जो दुनिया भर में, पूरी दुनिया भर में फेमस है, और उन्होंने काफी सारे मैच जीते हैं। जो अरमान नाम का बंदा है, इसने काफी सारे मैच ऑलरेडी जीते हुए हैं, मगर हमारे टीम इंडिया के जो ये अंकित बयानपुरिया थे, इनका ये पहला मैच था। तो अब देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में क्या होने वाला है। अंकित बयानपुरिया के लिए मैं बोलना चाहूंगा, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। नेक्स्ट टाइम वील स्ट्राइक बैक, वील स्ट्राइक इवन हार्डर। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए ब्रदर वी की आवाज में गाना चला रहा हूँ, आत्मा रामा, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुने

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझ

में ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगा।

ज्ञान संसार का ना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

इस गाने में एक लाइन है, एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। मतलब एक शरीर दो मनुष्य हो सकते हैं, कैसे? फिल्मों में डबल रोल से। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। 4896 शो का नाम, और आप सभी से मैं जो बात बोल रहा हूँ ना कि फिल्म के अंदर एक शरीर दो मनुष्य, हाँ डबल रोल। और पता है आप लोगों को, रामायण मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 4 मिनट 9 सेकंड का ये पूरा का पूरा ट्रेलर। और फिर इस ट्रेलर के बाद से लोगों की अलग अलग उम्मीदें बन चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो आदि पुरुष जैसा हाल मत करना, अच्छी फिल्म बना देना बस इतना कह रहे हैं लोग। दिवाली पर आ जाएगी मूवी, हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। मगर मुद्दा इस टाइम यही है कि एक शरीर दो मनुष्य कैसे हैं, किसका डबल रोल है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, रणबीर कपूर का शायद इसमें डबल रोल है। भगवान परशुराम का भी रोल निभाएंगे रणबीर कपूर इसी मूवी में, और शिव धनुष जब टूटेगा तो फिर भगवान परशुराम के रूप में मौजूद होंगे वहां पर रणबीर कपूर। तो ये तो देखना बनता है कि ये मूवी कैसी जाने वाली है। और बॉलीवुड की जब भी बात आती ना तो मुझे ऐसा लगता है, देखो फिल्म अच्छी जानी चाहिए जब भी वो एक हिस्ट्री से जुड़ी हो। और इसी के साथ साथ एक बात बोलना चाहूँगा कि रामायण के ऊपर ये जो फिल्म बन रही है, इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रणबीर कपूर ने ही लिए हैं। 150 करोड़ रुपए इन्होंने चार्ज किए हैं पूरी मूवी के लिए। देखो करेंगे भी, क्योंकि एक तो बहुत बड़े स्टार हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ना कहना पड़ता है एक ऐसी फिल्म करने के लिए। तो रामायण पूरी की पूरी शूट हो चुकी थी कब की, और अभी इसमें VFX पे काम चल रहा था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़े मोड़ा काम है, वो हो जाएगा जल्दी से, और फिर उसके बाद हम लोगों के सामने मूवी पेश कर दी जाएगी साल 2026 दिवाली में। और उसी के साथ साथ मैं भी एक गाना पेश करता हूँ आप लोगों के लिए, हर्ष लिखारी की आवाज में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

रुपए पंज लैके इथे खांदा सीगा लेज वो देशों काली तुका तो गया परदेस छेती मिल बापू साडा लगदा ना जी उड़ीकदा आ पुत ते उड़ीकदी आ धी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: वी बैक जसमानक डिवाइन संडे नो कॉम्पिटिशन।

कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सरकार टैक्स मांग रही है, लड़कियां हमसे फोटो मांग रही है, और बच्चे न्याय मांग रहे हैं, और यहाँ पर व्हाट्सएप हमारी एज मांग रहा है, बट क्यों? रेडियो का गौरव, आरजे
1: गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का फिर से स्वागत करता है, HR 896 प्रोग्राम का नाम। और अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखो, अभी व्हाट्सएप ना हमारी एज पूछ रहा है। देखो, मैं नहीं बताने वाला एज, नहीं देखो, लड़कियां कहती ना कि लड़कियों को इससे एज नहीं पूछनी चाहिए, ये व्हाट्सएप तो डायरेक्टली पूछ रहा है, इवन लड़कों से भी पूछ रहा है। हाँ, लड़कों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं एज पर द इंडियन लॉज हमें एज की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप जल्दी से अपनी एज बता दीजिए। तो मैं क्या एज बताऊँ उनको अपनी, मतलब मैं अपनी असली वाली एज बताऊँ या फिर जो मेरी डॉक्यूमेंट्स में है वो वाली एज बताऊँ? क्योंकि दो दो एज होती है ना सबकी, एक जो वो खुद से सोच के बैठा होता है कि नहीं मैं तो इतने ही साल का हूँ उम्र 55 की दिल 55 का, ऐसा भी तो होता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ। तो ये एज वाला मैटर ना मुझे समझ नहीं आया। अभी कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप ने बोला था कि देखो अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लो आप लोग, फिर आपको कोई भी आपके यूज़र नेम से सर्च कर लेगा वो तो गलत बात है ना। तो ऐसी नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में आती रहती है, तो उसकी वजह से सवाल खड़े होते रहते हैं। तो आपके मन में भी सवाल आया ये या नहीं आया कि हमारी एज क्यों पूछी जा रही है? और लड़कियों को तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है एज बताने में, तो वो बताएंगी या नहीं बताएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पास अभी तक ये ऑप्शन आया एज पूछने वाला? मतलब पूछ रहे हैं मुझसे तो लगातार परसों से, मैं नहीं बता रहा चलिए अभी फिलहाल गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। रेडियो महारानी पर एक गाने का नाम है हंसती रहे तू, पैराडॉक्स की आवाज़ में। हाँ, भूला मैं जहाँ तू, हंसती रहे तू। हाँ, क्योंकि फ्रेंडशिप डे गया है ना, तो उसको तो हंसना बनता ही है जिसने मेरे पैसे खाए हैं। लड़की की बात नहीं कर रहा था, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। हाँ, भूला

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Thank you.

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: बकवास है।
1: बकवास तो जी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें बकवास है सबके बारे में करूंगा बात, लेकिन उससे पहले रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड एक बात बोलना चाहता हूँ, सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, क्या हाल है फरीदाबाद। अगर आप लोग भी कहीं पर परेशान हैं तो फरीदाबाद का हाल बताइएगा जरूर। और अभी है फरीदाबाद का हाल बताने के लिए मेरे साथ है फोन लाइन पर कौन।
2: हाय, मेरा नाम विकास है। और फरीदाबाद के हाल की बात करूँ तो बारिश के बाद थोड़ा सा बेहाल हो रखा है, पानी बहुत ज्यादा जगह जगह पे भरा हुआ है। आज ना बहुत सारे एरिया में डूब गया, तो इतना था कि मेरी टायर अच्छे से डूब सकते थे गाड़ी से। तो इतना हाल अभी का अगर आप पूछोगे तो अभी का तो हाल।
1: तो आप लोगों ने कभी ऐसा देखा भाई के जैसे कूड़ा वहां पर पड़ा हुआ है उसकी वजह से सीवर लाइन जाम हो गई है?
2: मतलब ऐसा बहुत सारी जगह पे है, बट वही सीवर लाइन आती है की वजह से, या बारिश एक बार हो गई चली गई और उसके बाद उसका जो अब वो उसकी वजह से दोबारा बारिश बढ़ जा रहा है, ये बहुत बड़ी जगह होता है।
1: थैंक यू सो मच विकास, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खैर नाम विकास है तो इन्होंने विकास की ही बात करी है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है फरीदाबाद की वो आप सबके साथ जरूर शेयर करूं। और अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम्स है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नंबर है जी हमारा 9654896896। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाने चला रहा हूं, उन गानों में से सबसे बढ़िया गाना है ये मनिंदर भट्टर की आवाज में लारे। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडर आप सभी के साथ, आप सुन रहे हैं HR 89.6।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: देख के भी बहुत ज़्यादा डर लग गया। खैर मैं बारिश की बात कर रहा हूँ तो बारिश का माहौल कुछ ऐसा है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन अब गीले गीले रहेंगे, आप लोग बारिश में भीगे भीगे रहेंगे, तो आज भी बारिश होगी, कल भी बारिश होगी, परसों भी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो देखते हैं कितना सच होता है ये सारी चीज़ें। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए कुछ गाने चला देता हूँ, और ये वाला गाना सारे दिल टूटे आशिकों के लिए। अगर बाहर बारिश हो रही है ना, मैं अभी स्टूडियोज बाहर जाके देखता हूँ, अगर बाहर बारिश हो रही है तो इस गाने को अच्छे से फुल वॉल्यूम में ज़रूर सुनिएगा। डिवॉइस सिंह की आवाज़ में आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना। मैं हूँ कौन, आरशी गौरव आप सभी के साथ है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं HR 896।
1: उसकी थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ, ये थोड़ी

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: आज ना इस पंजाब

0: अभी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

ऑल्दो ये मिक्स मैशअप गाना था, बट इसमें एक गाना है हनुमान का, इनका रन इट अप, और उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। एक हाई एनर्जी हिप हॉप ट्रैक एक्सप्लोरिंग इंडिजिनियस रूट्स, जनरेशनल रेजिलियंस एंड कम्युनल सक्सेस। क्या बोलिया मैं, आपको लग रहा होगा ना, रन इट अप गाने की बात कर रहा था हनुमान काइंड के इस गाने के बारे में। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक्चुअली मैं ये जो गाना था अभी आप लोगों ने जो सुना रन इट अप, वो है हनुमान काइंड की तरफ से और प्रोड्यूस बाय कलमी। एंड अगर मैं इसमें बारे में बताऊँ ना, तो इसके अंदर ना कहीं लॉयल्टी दिखती है इस गाने के अंदर। कैसे, इसमें एक लाइन आती है, आई पुट माई मनी डाउन ऑन ऑल ऑफ अस, या ना याद है ये लाइन, ऑन माई पीपल नाउ ऑन व्हाट आई लव, मतलब पैसा मैं उस चीज़ पर रख रहा हूँ, हम अपने सबके ऊपर रख रहा हूँ पैसा, और साथ ही साथ जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन सब के लिए मैं सारा पैसा कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आई डोंट नो व्हाई। एंड शूटिंग भी इंडिया में जब हुई तो फिर उसके बाद अमेजिंग सा ही ट्रैक निकल कर आया, और इसी के साथ साथ केरला का एक स्टाइल दिखाया इन्होंने, ड्रम स्टाइल जैसे कहते हैं चेंदा, इसको अगर मैं ढंग से बोलूँ तो, और इंडियन फोक ड्रम्स भी दिखाए इन्होंने बहुत सारे। तो बेसिकली इंडियन रूट्स को पूरे विदेश में फैलाने का काम कर रहा है कौन, हनुमान काइंड बाय द म्यूज़िक रन इट अप, एंड दैट वॉज अमेजिंग। इससे पहले भी एक गाना आया था जो बिग स्टेप अंडरग्राउंड रैपर, सुना था वो गाना, बड़ा अमेजिंग था, तो उसमें मौत का कुआं दिखाया गया था। तो ऐसे ही कुछ कुछ गानों को डिकोड करते रहेंगे हम लोग रेडियो महारानी 89.6 पर रोजाना इस टाइम, हाँ इसी टाइम पे म्यूजिक डिकोड करा करेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर, द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सवालों में सत्य से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या आप लोग भी सड़क पर गड्ढों से परेशान हैं? अगर परेशान हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में काफी सारी जगह ऐसी है जहां पर गड्ढे बढ़ गए हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी हाँ, स्वागत है जी सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसको ना शेयर करना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे जीवन से रिलेटेड हो या फिर हो फरीदाबाद से रिलेटेड। तो अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी झेल रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग गड्ढों की बात कर रहे हैं, तो अगर गड्ढों की बात करूं तो फरीदाबाद में हर सेक्टर में कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहां पर बारिश के कारण या फिर मैं बोलूं कोई और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं। एंड आज ही मैंने ट्रैवल किया नहर पार अगवानपुर साइड। अगवानपुर इज लाइक सेक्टर 91, सराय के बैक साइड में सेहतपुर, तिलपत, इन सब के आसपास से होते हुए अगवानपुर जाते हैं। वहाँ की सड़कें अभी बन रही है, मगर जब तक नहीं बनेगी तब तक के लिए लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये है गड्ढों का माहौल। तो अभी देखो, डेवलपमेंट हो रहा है एंड डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, तो उसमें टाइम लगेगा। बट उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट रूट अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट रूट ले सकते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा होता है, हम लोग समय के अभाव को देखते हुए हम लोग छोटे रास्ते से जाते हैं, उसमें गड्ढे होते हैं। समय का अभाव है इधर भी, तो इसी के लिए मैं गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। ये गाना आप सभी के लिए, मैं हूँ गौरव आप सभी के साथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

बिल्कुल आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है 89.6 पर। और सभी को बता दूं अब वक्त आ चुका है कुछ ऐसी चीज का जिसमें हम करते हैं सपनों को। काफी बार ऐसा होता है ना, हम लोग सपने में देखते हैं अपने बचपन के दोस्तों को जिन दोबारों से मिले ही नहीं है। तो अगर आप बचपन के दोस्तों से फिर से मिल रहे हो वो भी सपने में, तो इसका मतलब यही होता है कि अब आप अपनी बिजी लाइफ से थक गए हो और अपने बचपन के वो बेफिक्र दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, है कि नहीं। और पता है आपको, एक ना स्वप्न शास्त्र भी है। हाँ, जैसे अर्थशास्त्र वैसे स्वप्न शास्त्र, वैसे उसके मुताबिक पता क्या होता है कि पुराने दोस्तों को अगर आप लोग देख रहे हो सपने में, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में किसी पुराने साथी के मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इस बात ये चीज़ ऐसी दिखाती है कि आपके अंदर जो पुरानी खुशियाँ थी, जो मासूमियत थी, वो दोबारा आप महसूस करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें और सपनों में आप लोग दोनों कर क्या रहे थे, इससे भी मैटर करता है। क्योंकि अगर आप लोग कहीं घूमने गए हो, आप लोग कुछ खा रहे हो या फिर कुछ स्पेशल चीज़ खा रहे हो, या फिर आप लोग स्पेस में उड़ रहे हो, तो भी बहुत डिफरेंट मतलब मीनिंग निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है सपनों में, और अक्सर सपने ना सच भी होते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर अभी भी आप लोग अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिले हो बहुत टाइम से, तो वक्त आ चुका है कि अपने पुराने दोस्तों को एक फ़ोन कॉल लगाइए और उनसे मिलने ज़रूर जाइए। और इसी के साथ साथ एक बात बोलूँगा, अगर आप लोग किसी और शहर में रह रहे हैं और बचपन के दोस्त को मिस कर रहे हैं, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है अगर आपके पास, तो अब टाइम है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया पर हर जगह आप लोग उन्हें सर्च कर सकते हैं और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम किसी और की आवाज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मगर बता दूं आप सभी को कि आज से ही यानी कि अगस्त की शुरुआत से ही, पहला मंडे अगस्त का, और आज से ही नया चीज शुरू हुई है, यानी कि 5 से 9 रोज शाम को आप सभी के साथ बात करने के लिए आता है रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। तो जी रेडियो गौरव आप सभी के साथ है। एंड एक और बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये कि अभी वक्त हो चुका है जिम ब्रो का। अगर आप लोग जिम जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जाते हैं तो जाना शुरू कर दीजिए। अब मैं ऐसा बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे

लोग होते हैं जो जिम जाने की कोशिश तो करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम लोग भी जिम ज्वाइन करेंगे, बट आउट ऑफ सम reasons वो लोग नहीं जा पाते। वो सोचते हैं कल ज्वाइन कर लेंगे, परसों ज्वाइन कर लेंगे। तो आज तो मैं आप सभी को मोटिवेट करने आया हूँ। देखो, आपकी जो ब्लड रिपोर्ट आएगी ना, उसका वेट मत कीजिए। आप लोग आज से ही जिम ज्वाइन कीजिए, या फिर जिम अगर नहीं भी जाते तो वर्कआउट ज़रूर कीजिए। जो हमारे पूर्वज लोग थे ना, वो लोग हमसे कई गुना ज़्यादा वर्कआउट किया करते थे। कैसे? वो इधर से उधर जाने के लिए, घर से दूर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम साइकिल नहीं हुआ करती थी। वो पैदल पैदल जाते थे, और मैं बात कर रहा हूँ 1990s से पहले की, मतलब 50s से पहले की चलो बात कर लेते हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर लेते हैं। उस टाइम तो बहुत ही किस्मत वाले लोगों के पास साइकिल या फिर घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, बग्गी चला करती थी, बसेस तो खैर थी ही नहीं। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग आज से ही वर्कआउट शुरू करने का एक प्रण ले लीजिए। भले ही 15 मिनट का वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, या फिर आप सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़िए, या फिर आप हो सके तो ब्रिस्क वॉक कीजिए, बट करना शुरू कीजिए। और जो भी इंसान रनिंग करने की सोच रहा है, उन लोगों को एक टिप देना चाहूँगा कि पहले दिन से ही रनिंग करना मत शुरू करना। धीरे धीरे आदत बनाओ, पहले चलो, फिर 50 मीटर जॉगिंग करो, फिर चलो, फिर 50 मीटर जॉगिंग करो, फिर ऐसे करते करते अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, तो आप लोग धीरे धीरे बहुत कुछ कर लोगे। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना चला रहा हूँ, बाय, नहीं नहीं मैं बाय नहीं बोल रहा हूँ, बाय इस गाने का नाम है, आदित्य भारद्वाज की आवाज़ में रेडियो महारानी पर।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: क्या आप लोगों को पता है जब पानी जमा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें मच्छर पैदा होने लगते हैं। और आपको पता है रोज शाम को 5 से 9 रेडियो महारानी जी 9.6 पर कौन आता है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी अब बिल्कुल रेडियो का गौरव आप सभी के साथ फिर से हाजिर है रोज शाम को 5 से 9 मंडे टू फ्राइडे। आऊंगा मैं और अभी भी आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ। खैर वक्त हो चुका है मेरा यहाँ से जाने का, मगर जाने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी से जो भी मुझे सुन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चला के राइट साइड में देख रहे हैं कि कौन जा रहा है ये मत देखिए, गाड़ी पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ पर ध्यान दीजिए, वो ये कि घर के आसपास पानी तो नहीं जमा हो रहा कहीं, और अगर पानी जमा हो रहा है कहीं उसमें मच्छर तो नहीं पैदा हो रहे, तो आप उस पानी को जाके घूर के नहीं देखना है। हम लोगों ने बस उसमें 2 ढक्कन पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो एक काम कीजिएगा पानी को स्टैग्नेंट मत रहने दो, मतलब पानी खड़ा ना रहे एक जगह पे, उसको हिला दो रोज़ पानी में कुछ ना कुछ डाल दो, हिला दो उसे, तो उससे अंडे नहीं देंगे मच्छर। और इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा भी तारपीन तेल या फिर केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है, सारे मच्छर वहीं पर मर जाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे। अब साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि अपने घर की छत पर भी चेक कीजिए टायर के अंदर कहीं पानी जमा तो नहीं है, कहीं आपके कूलर के अंदर पानी तो नहीं जमा, तो इन सब चीज़ों को चेक कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 से मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा कल शाम फिर से। कौन मिलेगा आप सभी के साथ? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल रेडियो का गौरव ही मिलेगा आप लोगों से, और अभी लेता हूं इजाजत। So this was RJ Gaurav signing off from Radio Maharani 89.6 FM. Tab tak le bye bye. Take care. Apna khayal rakhiye. Sayonara. And suniye is gaane ko jiska naam hai Divya Drishti. Kya hai Divya Drishti? Suniye, enjoy kijiye. Aur wapis aayegi geet Videsh ki baaziya. Tab tak le bye bye. Take care. Sayonara. This is RJ Gaurav signing off from Radio Maharani 89.6 FM. Kuch hatke.
1: हर महादेव मैं हूँ बैरागी भोले, तेरी वजह से हूँ मैं प्रेमी हूँ मैं पापी हूँ मैं माल पी के मजे में हूँ मैं नशे में हूँ इतना ज्यादा कि बुरे कर्म भी ठीक।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं। एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा

ज्ञान संसार कना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डी वॉइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगा।

ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ

0: इंजेक्शन नहीं होता। वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है, कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं, और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी, और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किससे कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिए। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती हैं। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक।

फिर शायद शाम के साये बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव। जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है। यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है। लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है। हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है। टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती, कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है, और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। देखो देखो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके लेकिन

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती।

अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, तो पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे,
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है, इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही है। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसके बारे में बातें होंगी, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स हैं। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ए भाई दरा देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज़ हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
1: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो, रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
2: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी सक्सेस से नहीं बल्कि अपने इम्पैक्ट से याद किए जाते हैं। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनकी जर्नी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि हिम्मत भी चाहिए होती है। हे आई एम मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी वुमन की कहानी जिन्होंने उस वक्त एक चैलेंजिंग फील्ड चूज की जब वहाँ वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, फिर अपने एक्सपीरियंस को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज किया। एक इंजीनियर, एक ऑथर, जिनकी कहानी हमें बताती है कि असली सक्सेस सिर्फ अचीव तक नहीं सीमित होती बल्कि जब आपकी मेहनत और नॉलेज किसी और की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए तब वो सक्सेस मीनिंगफुल बन जाती है। तो आज संघर्ष की कहानी में हम सुनेंगे कैसे इंस्पायरिंग जर्नी जहां स्ट्रगल है, करेज है और एक पर्पस के साथ जीने की कहानी भी है। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: पड़ोसन हूँ इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिम्मी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। वो हैं सुधा मूर्ति जी।

बनाए। वो टाटा मोटर्स में काम करने वाली पहली फीमेल इंजीनियर्स में से एक बनी। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, एक मैसेज था कि टैलेंट और डेडिकेशन के सामने बैरियर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, और आप अगर कुछ नया चूज करते हो कुछ करने के लिए तो उस चीज में आगे आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो कहानी में आगे क्या हुआ और उन्होंने आगे कहानी में अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाया, हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6 FM. आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका. और लिसनर्स, हर इंस्पायरिंग जर्नी में एक मोमेंट आता है जब इंसान डिसाइड करता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या होगा. और सुधा मूर्ति जी की जर्नी भी सिर्फ करियर सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रही. उन्होंने टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेने के बाद सोसाइटी के लिए काम करने का रास्ता चूज किया. 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जिसके थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज में काम किया गया. सुधा मूर्ति ने राइटिंग की दुनिया में भी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाई. उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है और उनकी बुक्स जैसे वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू, 3000 स्टीचर्स एंड ग्रैंडमा बैग्स ऑफ स्टोरीज रीडर्स के बीच बहुत पॉपुलर रही हैं. उनकी राइटिंग की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि सिंपल स्टोरीज के थ्रू उन्होंने काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी जैसे वैल्यूज को हाईलाइट किया है. उनकी जर्नी के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज तब और पावरफुल बन जाती है जब वो दूसरों के लिए काम आए. तो किस तरह से सुधा मूर्ति जी की जर्नी आगे बढ़ी, हम सारी बातों पे बात करेंगे बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड द होस्ट मोनिका। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी की कहानी से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लेसन मिलता है कि लाइफ में सक्सेस पाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सक्सेस के लिए अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे यूज करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। और अगर चैलेंजेस आए तो उन्हें अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ का चांस समझिए, क्योंकि एक स्ट्रांग माइंडसेट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स किसी भी ऑर्डिनरी जर्नी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे थे संघर्ष की कहानियां ऑन रेडियो महारानी। और आज का शो मेरा लास्ट शो है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आप रेडियो महारानी के थ्रू और भी इंस्पायरिंग जर्नी सुनेंगे और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनेंगे किसी और होस्ट एंड दोस्त के साथ। फिलहाल आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका कर रही है शाइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। तो मुलाकात तो नहीं होगी, पर अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। और आपकी कोई विश है, कोई इमोशंस है या कोई फीलिंग्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते। तो मोनिका लेती है आप सभी से विदा। और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिए।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।

0: कहते हैं ना, दिल सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए भी हेल्दी होना चाहिए। इसी के साथ वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जुंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जरूरी बातें आप तक लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर और हर फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी मेंस हार्ट हेल्थ। और अगर बात की जाए हार्ट अटैक और हार्ट डिसीजेस, तो ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि यंग एज में भी इसके काफी केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज जानेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, और साथ ही क्या वो वार्निंग साइन है जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरविंद फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। तो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में मेंस हार्ट हेल्थ की। और अगर बात की जाए हार्ट हेल्थ की, तो राइजिंग हार्ट अटैक दिस इज इन यंग मैन आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर डॉक्टर, अगर हार्ट अटैक की बात की जाए, तो पहले हार्ट अटैक को सिर्फ बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो 30 से 40 साल की एज में भी हार्ट अटैक के केसेस काफी बढ़ गए हैं। सर डॉक्टर, आप ये बताइए कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, और साथ ही जितने भी यंग मैन आज हमें सुन रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो पोषण की पाठशाला। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू लिसन दीज क्वेश्चंस जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, स्पेशली हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, जो यंगस्टर्स में आजकल एक फियर डेवलप हो गया है। मानिए कि यंग पेशेंट्स हम लोग आज से 10 साल पहले तक इतने हार्ट के नहीं देखते थे जितने आज की डेट में देखना शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ भी आती है और हम लोग अपने कैथ लैब में इमरजेंसी

0: में ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि 30 साल के, 25 साल के तक, 18 साल के तक पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है। इस चेंज का क्या कारण है? सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपने 10 साल की प्रैक्टिस में रियलाइज़ किया है, वो ये है कि यंगस्टर्स में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मतलब आज से 20 साल पहले इतने यंग एज में स्मोकर्स नहीं देखे जाते थे, आजकल की डेट में कॉलेज से लेके, इनफैक्ट कभी कभी मैं स्कूल के बच्चों को भी स्मोकिंग करते हुए देखता हूँ। दिस वन सिंगल थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन यंग मेल्स, स्पेशली। फीमेल्स भी खैर स्मोकिंग करती हैं, बट फिर भी कम कॉमन है, बट मेल्स की स्मोकिंग जो हार्ट अटैक करा रही है, और ये यंग एज के हार्ट अटैक्स हैं, ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ है। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट कैन किल यू एनी टाइम। इसके अलावा भी बहुत कारण रहते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक, जिसे कहेंगे सडन कार्डियक डेथ, हो सकती है, जिसमें कि कार्डियोमायोपैथीज, चैनलोपैथीज, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां जो कि फैमिलियल चल रही होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं मानता हूँ।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर, यानी बढ़ती लाइफस्टाइल और हमारी रोज की आदतें हार्ट हेल्थ पर सीधा असर डाल रही हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉमन मिथ है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिक ब्रेक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ की। सो डॉक्टर, अगर हार्ट डिसीजेस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे मिथ एंड रियलिटी है हमारे आसपास, इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम यंग हैं और फिट दिखते हैं तो हार्ट डिसीज का कोई रिस्क ही नहीं होता, तो डॉक्टर क्या ये सच में सही है? और साथ ही यंग एज में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की हेल्दी हैबिट जरूर अपने आनी चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जैसा इंसान दिख रहा है बाहर से, अंदर भी क्या उसका शरीर स्वस्थ है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर जो है खाली स्किन से ही पता चल जाता है, स्किन के ग्लो से पता चल जाता है कि हेल्दी है, बट अगर ये अंदर कई बार ऐसी बीमारियां पनप रही होती हैं जिनको हम लोग कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो हमें लगता है हम हेल्दी हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कि हम साइलेंट किलर कहते हैं। हमारी स्टडीज में देखा गया है कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन व्हिच इज अनकंट्रोल्ड, मतलब कि हर चौथा बंदा जो है उसको बीपी की बीमारी है और उसका कंट्रोल अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये बीपी अगर लंबे समय तक रहता है तो पहले 5-6 साल कुछ नहीं कहता है, पर धीरे धीरे अंदर से शरीर को खोखला करता जाता है। ऐसी और भी कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर हम स्क्रीन नहीं करें, जिनको हम चेकअप नहीं कराएं रेगुलर, तो धीरे धीरे बॉडी को खाएंगी। इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, पर बाद में जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी।
0: तो डॉक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज आपने हमें समझाई है, सिर्फ फिट दिखना ही हेल्दी हार्ट की गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं उन वार्निंग साइन की जिन्हें टाइम रहते पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पर भी बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। तो डॉक्टर आप बात करेंगे वार्निंग साइन वी शुड नेवर इग्नोर। तो डॉक्टर अगर बीमारियों की बात की जाए ना तो हमारी बॉडी कई बार हमें बहुत पहले से सिग्नल देना शुरू कर देती है, लेकिन हम उन सभी सिग्नल्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर करने लगते हैं। ये बताइए हार्ट अटैक के वार्निंग साइन क्या होते हैं? साथ ही अगर किसी इंसान को कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं अपनी बॉडी में तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए?
1: देखिए हार्ट अटैक का सिम्टम मैं अगर क्लासिकल सिम्टम बोलूं तो एक छाती पे दबाव, उसके साथ बाजू में भी ये दबाव जाना और गले में भी इसी दबाव का महसूस करना, ये एक क्लासिकल सिम्टम्स है। ये एसोसिएटेड विद स्वेटिंग, मतलब खूब सारा पसीना आना, घबराहट होना, इम्पेंडिंग डूम जिसे कहते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि मेरी मौत आ गई, ये वाली फीलिंग क्लासिकल सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूट करती है हार्ट अटैक के। पर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स, मतलब एक तिहाई पेशेंट्स इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं। सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, किसी की धड़कन बढ़ रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन नहीं होते हैं हार्ट अटैक में। तो मेरे विचार में ऐसा कोई भी सिम्टम जो अनयूजुअल लगे, जो उनको पहली बार महसूस हो, जिससे उनको की डर लगे, घबराहट हो, तो जरूर नजदीकी अस्पताल में एक बार ECG कराना चाहिए। बिकॉज अब जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि उम्र नहीं रही इस बीमारी की, अब मानिए कि पोस्ट कोविड कह लीजिए, वैक्सीन का असर कह लीजिए, या स्मोकिंग का असर कह लीजिए, या हमारे लाइफस्टाइल के चेंजेस कह लीजिए, पर इसकी कोई उम्र नहीं रही। बट हाँ 25-30 साल के बाद ये बीमारी किसी को भी हो सकती, तो ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो जरूर नजदीकी अस्पताल में इमरजेंसी जाके ECG कराएं।
0: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, यानी इमरजेंसी के वक्त सही इन्फॉर्मेशन और तुरंत एक्शन किसी की भी जान बचा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो फिर इसी बात पर लाइफस्टाइल का रोल और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसको भी समझेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अभी बाकी है जून का जुनून। इस आग उगलती गर्मी से अगर खुद को है बचाना तो पानी को अमृत समझ पी जाना।
1: साथ आसमां जी रे, सब साथ समंदर पी रे, जन साथ सुरों में कर दे ये ऐलान।
2: सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग से हो जाओ सावधान। डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। सो डॉक्टर, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ की, बिकॉज कहा जाता है लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस, लेट नाइट रूटीन, जंक फूड और एक्सरसाइज की कमी, ये सब हमारा खराब लाइफस्टाइल का पार्ट है। ऐसे में ये सब हमारे हार्ट को किस तरह इफेक्ट करता है, और साथ ही अगर किसी को सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज से शुरुआत करनी हो तो वो किन चीजों से शुरुआत कर सकता है?
1: थैंक यू अंजलि, आपने बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा है। आजकल की जनरेशन के साथ जो कॉरपोरेट लाइफ के साथ जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है वो इज रियली डेंजरस एंड हार्मफुल टू आवर हार्ट। एंड मैं मानता हूँ कि लाइफस्टाइल में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो है गुड फूड विच मीन्स बैलेंस्ड फूड, गुड स्लीप एंड गुड एक्सरसाइज। ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बिना हम लोगों की लाइफ कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लाइफस्टाइल में स्लीप से, क्योंकि आजकल एक तो नाइट शिफ्ट्स हैं कॉर्पोरेट में, लेट वर्किंग आवर्स हैं, इसके बाद लोगों के नेटफ्लिक्स की एडिक्शन, चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन, इसके कारण बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन इन स्लीप साइकिल हो रही है। लोग कभी सैटरडेज को 2 बजे सो रहे हैं और कभी अपने ऑफिस आवर्स में सो रहे हैं। जो स्टडीज में देखा गया है, अगर आप अपनी स्लीप के ड्यूरेशन को 7 आवर्स to 9 आवर्स के बीच में नहीं रखते हैं, मतलब 7 आवर्स से कम सोते हैं, 9 आवर्स से ज्यादा सोते हैं, दोनों ही केसेस में हार्ट रिस्क बढ़ता है। दूसरा, नॉट ओनली दी नंबर ऑफ आवर्स यू स्लीप, ऑल्सो द पैटर्न इन विच यू स्लीप मैटर्स। मतलब अगर मान लीजिए आप रात में 7 घंटे

0: शुगर है, तो ये सब चीजें आपको अवेयर करेंगी और आप फिर उन ड्रिंक्स को या उन फूड्स को अवॉइड कर पाएंगे। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी डाइट। लाइफ के लिए हेल्दी एक्सरसाइज, एडिक्वेट एक्सरसाइज, विच आई वुड कॉल एज 30 मिनट्स ऑफ मिनिमम गुड लेवल एक्सरसाइज, नाउ नॉट 30 मिनट्स ऑफ टहलना। 30 मिनट टहलने से दोस्त बनेंगे, हार्ट हेल्थ नहीं अच्छी होगी, पर अगर आपको अच्छी हार्ट के लिए एक्सरसाइज करनी है तो 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज बेयर मिनिमम। इससे स्लीप भी अच्छी आएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी घटेंगे, बॉडी वेट भी मेंटेन होगा, एंड यू विल फील फिट एंड एनर्जेटिक ऑल्सो एंड पॉजिटिव बिकॉज ऑफ गुड हॉर्मोन्स।
1: डॉक्टर से कहा जाता है छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, और जब बात लाइफस्टाइल की हो तो न्यूट्रिशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है, और इसी बारे में बात करेंगे लेकिन वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, एक साइंस है उसके पीछे। पर मेरे सबसे मूल चीज समझने वाली ये है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है खाने की, वो समझना सबसे जरूरी है। आज की डेट में प्लेट में जितना भी पड़ा है उसको खा लेना ठीक नहीं है, अपनी डाइट काउंट करनी जरूरी है। तो आमतौर पे एक फीमेल को 2000 किलो कैलोरीज चाहिए और एक मेल को 2500। सो इस कैलोरी काउंट से हम लोग अगर चलें और इसको डिवाइड करें, कि ऐसा नहीं कि ये जो कैलोरीज हैं ये सारी की सारी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लें, तो अराउंड से 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए। इसमें भी जो फैट 20% है उसमें 6% या 7% ही अराउंड घी वाला, जो सैचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं, घी हो सकता है। तो ये एक बैलेंस डाइट कंस्टिट्यूट करती है। और इसके अलावा हमें अगर ज़्यादा अपने डाइट को, मतलब पेट को भरने लायक डाइट बनाना है, तो उसमें हमें ऐड करना चाहिए रफेज, जैसे सलाद हो गया और इसी तरह की प्लांट बेस्ड चीज़ें, जो कि हम लोगों का पेट भरें पर ज़्यादा कैलोरीज ना दें। ये तो हुई बात कैलोरीज की। और अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो है दिन में 2 स्पून या 3 स्पून से ज़्यादा हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो इट्स नॉट गुड फॉर योर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डायबिटीज़ में रिस्क बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेट बढ़ता है और हार्ट का रिस्क भी बढ़ता है। तो शुगर्स को इज द न्यू पॉइजन कहा जाता है आजकल। तो जो वाइट थिंग्स हैं, सॉल्ट, वाइट शुगर, वाइट एंड मिल्क ऑल्सो इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू ज्यादा इन लार्ज क्वान्टिटी। तो इन तीन चीजों से बचें। और बाकी अगर मिल्क लेना है तो आप स्किम्ड मिल्क लें, क्रीम पार्ट है, फैट निकला हो तो उसको आप ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रेफर सी फूड मोर देन योर जो आप मटन या वो खाते हैं। जो पोल्ट्री में भी है तो उसमें एग्स खाना इज गुड, बट उसका जो बीच का योक है उसको निकाल के खाएं, दैट यू कैन कंज्यूम एंड दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है। सही डाइट न सिर्फ हार्ट को हेल्दी रखता है बल्कि कई सीरियस डिसीजेस का रिस्क भी कम कर सकता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर, अब बात करते हैं साइलेंट किलर्स एंड रेगुलर चेकअप्स की। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है। सो ऐसे में इनका हार्ट डिजीज से क्या कनेक्शन है और साथ ही किस एज से रेगुलर हार्ट चेकअप्स कराना शुरू कर देना चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है अंजलि। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, हमारे जो लोग हैं उनको नहीं पता ये बात कि 20 साल की उम्र से हर साल इंसान को अपना बीपी नापना चाहिए। साल में एक बार ही सही, पर बीपी नापना जरूरी है। उसमें अगर रीडिंग ज्यादा आए तो बार बार भी नापना चाहिए, पर अगर वो नॉर्मल है तो अगले साल नापना चाहिए। तो बीपी को मेजर हमेशा 20 साल की उम्र से हर साल करना चाहिए नियमित तौर पे, क्योंकि बीपी ज्यादा होने के कोई सिम्टम्स नहीं आते। कोई लोग कहते हैं कि बीपी से सरदर्द हो गया, पर यूजुअली बीपी से सरदर्द तभी होता है जब बीपी 200 के पार चले जाता है, और तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। तो बीपी को जरूर नापें हर साल। हर एक यंग आदमी जो कि हेल्दी भी महसूस करता है, जिसको कोई तकलीफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसे हर साल बीपी नापना चाहिए। दूसरा, आपने बोला डायबिटीज। आमतौर पर यूजुअली रिकमेंडेशंस कहती हैं कि 30 से 35 साल के बाद हर साल शुगर नापना है, पर मैं इसमें डिफर करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल बन गई है वर्ल्ड की। मतलब सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी इंडिया में है आज की डेट में। तो ऐसे में हम लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रिवेंशन के लिए 25 साल से 30 साल के बीच में हर साल शुगर नापना शुरू करना चाहिए, और अगर शुगर ठीक आ रहा है तो साल साल पे नापें। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को 20 साल से नापें, एक बार 20 साल पे नाप लें, अगर ठीक आता है तो हर 4-4 साल पे भी नाप सकते हैं, पर बीपी और शुगर हर साल पे नापें 20-25 साल की उम्र से।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, रेगुलर चेकअप्स और टाइम पर डायग्नोसिस बहुत सी प्रॉब्लम से हमें बचा सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और फटाफट से आज ही अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, एक चेकअप कराइए और अपना ध्यान रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: नहीं
1: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
0: आप बात में यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूचा मत में मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, क्यों बुलाई?
1: साले इतने हंसाए, तू क्यों गया?
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
1: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
1: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब

0: शानदार ट्रिक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर, आज हमने पोषण की पाठशाला में जाना है किस तरह से मेंस को अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही हेल्दी हार्ट की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। तो आज आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, साथ ही आज से ही अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनका डेली ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए।
1: 5 हेल्दी हैबिट्स। द फर्स्ट वन डेफिनेटली ऑन माय लिस्ट इज अ गुड 5-7 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड देन सेकंड गुड हैबिट इज गुड हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक एट लीस्ट। थर्ड, गुड ईटिंग हैबिट्स व्हिच कंस्टिट्यूट्स ऑफ बैलेंस्ड गुड प्रोटीन डाइट, एंड फोर्थ, गुड मेंटल हेल्थ विच इंक्लूड्स डी-स्ट्रेसिंग योरसेल्फ विद मेडिटेशन, योगा, एंड फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप स्मोकिंग। थैंक यू वेरी मच अंजलि, एंड इट वॉज ग्रेट टाइम, आई होप आई वॉज यूजफुल टू यू एंड एवरीबडी लिसनिंग।
0: जी डॉक्टर, तो दोस्तों आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हेल्दी हार्ट सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल और सही न्यूट्रिशन से भी बनता है। यानी छोटे छोटे चेंजेस जैसे बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना और टाइम पर हेल्थ चेकअप करवाना हमारे दिल को लंबे टाइम तक हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज हमें रेडियो महारानी के पोषण की पाठशाला में ज्वाइन किया डॉक्टर अरविंद, अ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। फिलहाल अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर ये ट्रैक। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनकी जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है। कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

ऐसा लगता था कि खेल कोई भी हो, मनु उसमें अपनी पहचान बनाई लेंगी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उन्होंने शूटिंग रेंज देखी, पहली बार हाथ में पिस्टल पकड़ी और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि शूटिंग बहुत महंगा खेल माना जाता है, लेकिन मनु के परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और पूरा साथ दिया। मनु ने ट्रेनिंग शुरू की और बहुत जल्दी सबको एहसास हो गया था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। जहाँ कई खिलाड़ी सालों तक नेशनल लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, वहीं मनु ने बेहद कम समय में अपने खेल

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

जिस उम्र में ज़्यादातर स्टूडेंट स्कूल असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम की टेंशन ले रहे होते हैं, उस उम्र में एक इंडियन गर्ल इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। साल था 2018। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं मनु भाकर की। मनु भाकर नेशनल लेवल पर अपना नाम बना चुकी थी, लेकिन अब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव करना था। मौका मिला कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का, जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहे थे। पूरे इंडिया की नजरें इस यंग शूटर पर टिकी हुई थी। प्रेशर बहुत था और एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज्यादा थी, लेकिन मनु ने प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया।

सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। न्यूज चैनल्स पर उनका नाम छा गया, लेकिन मनु यहीं नहीं रुकी। इसी साल उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता और दुनिया के टॉप शूटर्स को चैलेंज कर दिया। अब उन्हें इंडियन शूटिंग का फ्यूचर स्टार कहा जाने लगा। हर तरफ एक ही डिस्कशन था, क्या ये लड़की ओलंपिक मेडल भी ला सकती है? मनु का कॉन्फिडेंस पीक पर था, वो किसी बड़े नाम से नहीं डरती थी। टारगेट चाहे कितना भी टफ हो, उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता था और वो है परफेक्ट शॉट। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती, कभी कभी एक ही दिन सब कुछ बदल देता है, और मनु की लाइफ में भी वो एक दिन आने ही वाला था। एक ऐसा दिन जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। कौन सा था वो दिन, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा, आप सभी के साथ।

0: जा रहा हूँ। सवाल है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू, बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओह नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अले, दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी सालों की मेहनत एक ही पल में बिखर जाती है, और मनु बाकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब पूरा देश उनसे मेडल की उम्मीद लगाकर बैठा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। साल था 2021, टोक्यो ओलंपिक्स, हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना, और मनु भाकर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मेडल कंटेंडर्स में से एक मानी जा रही थी। करोड़ों इंडियंस को उनसे मेडल की उम्मीद थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ।

ऐसा जिसने पूरी कहानी बदल दी। मैच के टाइम पर उनकी पिस्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ओलंपिक्स जैसे स्टेज पर हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। समय निकलता गया, प्रेशर बढ़ता गया और मनु का रिदम टूट गया। रिजल्ट आया और वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। जो एथलीट मेडल फेवरेट थी वो पोडियम से बहुत दूर रह गई। सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, लोग क्वेश्चंस पूछने लगे, कुछ लोगों ने तो उनकी कैपेबिलिटी पर भी डाउट करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि एक यंग एथलीट के दिल पर क्या बीत रही थी। ओलंपिक से खाली हाथ लौटना उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। यह सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, यह उन सपनों का टूटना था जो उन्होंने बचपन से देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग हार के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग हार को अपनी कमबैक स्टोरी बना देते हैं। मनु ने दूसरा रास्ता चुना और आगे कैसे उन्होंने दुनिया के मन से डाउट को खत्म किया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाइवा इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

सबसे मुश्किल बैटल कभी कभी ग्राउंड पर नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, और टोक्यो के बाद मनु बाकर को वही बैटल जीतनी थी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं मनु बाकर की। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मनु के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो डिसअपॉइंटमेंट में डूब जाती या फिर वापस उठकर दुनिया को जवाब देती। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हुई, गलतियों का एनालिसिस हुआ, मेंटल स्ट्रेंथ पर काम हुआ। हर दिन एक नए मिशन की तरह था। उनका गोल बहुत सिंपल था, वापस आना और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आना। अगले कुछ सालों में मनु ने लगातार कॉम्पिटिशन्स खेले। हर टूर्नामेंट उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और स्ट्रांग बनाता गया। अब वो सिर्फ टैलेंटेड शूटर नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट बन चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। क्रिटिक्स धीरे धीरे चुप होने लगे और सपोर्टर्स को लगने लगा कि मनु की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आनी बाकी है। अब सारी नजरें पेरिस ओलंपिक्स पर थी। एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या मनु भाकर अपनी अधूरी ओलंपिक स्टोरी को कंप्लीट कर पाएंगी? जवाब जल्दी मिलने वाला था और वो जवाब हिस्ट्री बनाने वाला था। कैसे करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट

ओई मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना।
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

0: जिस एथलीट को टोक्यो के बाद लोगों ने अंडरएस्टिमेट कर दिया था, उसने पेरिस में ऐसा कमबैक किया कि पूरा देश खड़े होकर तालियां बजाने लगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक्स 2024, मनु भाकर अब पहली वाली यंग प्रोडिजी नहीं थी, अब वो स्ट्रगल, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुकी थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, प्रेशर फिर से था, एक्सपेक्टेशंस फिर से थी, लेकिन इस बार मनु मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार थी। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, मनु भाकर ने ओलंपिक मेडल जीत लिया। पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एथलीट बन गई जो कि एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल्स जीतने में सक्सेसफुल रही। ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये टोक्यो के दर्द का जवाब था। ये उन सब लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने अंडरएस्टिमेट किया था, और सबसे बड़ा जवाब था उनके खुद के लिए। आज मनु भाकर की कहानी हमें एक सिंपल लेसन देती है। कभी कभी जिंदगी आपको गिरा देती है, कभी कभी सपने टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो वही टूटे हुए सपने एक दिन हिस्ट्री बन सकते हैं। और इसीलिए मनु भाकर एक शूटर नहीं, एक कमबैक स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन है, और एक नाम है जो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारा नंबर है 9654896896। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। रेडियो महारानी के नाम से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वाणी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री रामसुख दास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में हमारे साधन काल

संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं।

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। यही ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर मुही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे मुझे पार करो।

है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है, लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कि कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोले हो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है, लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है, अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़ मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है। भज गोविंदा।

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है, ताते उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।